मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की षष्ठी तिथि, तदनुसार दिनांक 27 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 होने को है। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है।

स्वाभाविक है, कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है और उसके रोने की आवाज सुनते ही सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और एक महान संदेश दे दिया है।

ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा।

0: परशुरामाने
1: अनूप जलोटा के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति गीत। आइए सुनते हैं अगला भक्ति गीत जिसे गाया है बेला सुलाखे ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति रचना। लीजिए, पेश है ये भक्ति गीत सुमन कल्याणपुर के स्वर में।

0: सोनू निगम और बाबुल सुप्रियो के स्वरों में अभी आपने सुना ये भक्ति नगमा। श्रोताओं, इसी भक्ति गीत के साथ कार्यक्रम भक्ति धारा अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: नीतिकार कहते हैं, जो तो है कांटा बुबे ताहे बोतू फूल, अर्थात बुरा चाहने वालों का भी भला चाहना यही मनुष्यता का लक्षण है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये प्रतिक्रिया दो रूपों में होती है, शुभ और अशुभ। किसी ने हमें कष्ट दिया, पीड़ा दी, तो हम उस पीड़ा देने वाले को या तो बदले में वैसी ही पीड़ा देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, या उसे क्षमा कर देते हैं। ये सामान्य सी बात है, किंतु पीड़ा देने वाले को बदले में भला देना ये बिरलों का काम है। तुलसी लिखते हैं कि जिस तरह पत्थर मारने वाले को भी आम का वृक्ष मीठे ही फल देता है, उसी भांति संत जन दुर्जनों के बुरे व्यवहार पर भी उनका कल्याण ही करते हैं। तुलसी संत स्वम सम फूल फर ही पर हेत, इत्ते ये पाहन हनत उतते वो फल देत। दुर्व्यवहार के बदले सदव्यवहार, यही सज्जनता की पहचान है। महात्मा गांधी भी इसी के पक्षधर थे। सारे साधु संतजन इसे ही महिमा मंडित करते आए हैं। एक बोध कथा आती है, वृत्रासुर नामक अति बली राक्षस जब मारे न मरा तो देवता महर्षि दधीचि की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर महर्षि ने अपनी हड्डियां उन्हें दी, जिससे निर्मित वज्र से उस राक्षस का संहार हुआ। महर्षि का पुत्र पिपलाद जब बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता के उत्सर्ग पर गर्व हुआ, किंतु इस बात का क्षोभ भी हुआ कि देवताओं ने अपने स्वर्गीय सुख वैभव की रक्षा के लिए मेरे पिता का जीवन छीन लिया। पिपलाद ने स्वार्थी देवताओं को दंडित करने की ठानी। अकेले वो कुछ कर नहीं सकता था, सो उसने भगवान शिव की आराधना की। मृत्युंजय भगवान आशुतोष शिव शंकर प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। पिपलाद ने अपना मनोरथ कह सुनाया, कहा, प्रभु आप अपना

0: नेत्र खोलें और स्वार्थी देवताओं का नाश कर दें। शिव ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे लिए यह संभव है, किंतु ऐसा करना मंगलकारी नहीं है। स्वयं तुम्हारे लिए यह शुभ नहीं है। इससे जो सर्वनाश मचेगा, तुम भी उससे प्रभावित हुए बिना न रहोगे। प्रह्लाद आश्चर्य से मुंह देखने लगे। तब शिव ने समझाया, तुम्हारे भी अंग प्रत्यंग में देवताओं का वास है। तुम्हारे नेत्र सूर्य की उपस्थिति से देखने की क्षमता पाते हैं और तुम्हारे मन में चंद्रमा का वास है। वेद में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्य अजायतः। वचन सुनकर प्रह्लाद सन्न रह गए। उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वो अभी तक बदले की आग में जल रहे थे। उन्होंने क्षमाशीलता का मार्ग अपनाया। महाकवि भवभूत लिखते हैं, कल्याण के प्रतिदान में कल्याण ही तुम्हारे पास आता है। इसलिए भारतीय संस्कृति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा का स्वस्ति गान करती है और सबके करुणा की कामना से भद्रम करने भी शून्याम देवाह की प्रार्थना करती है। कांटे बोने वालों के लिए फूल बोने का दर्शन यही है कि जो फूल आप बोएंगे वो प्रतिदान स्वरूप आपको फूल बनकर ही मिलेंगे और कांटे वालों को कांटे ही हाथ आएंगे।
1: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को। साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियाँ, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही के पसंद के चंद गीत।
2: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की संगीतमय प्रस्तुति। स्वर है उत्तरा केलकर, श्रीकांत पारगावकर, शोभना राव और साथियों के।

लंका में पवन सुत ने वहां के वनों की जो शोभा देखी तो उनका मन अत्यंत पुलकित हो गया। वह एक पर्वत पर जा विराजे जहां से रावण की नगरी का अनुपम दृश्य दिख रहा था। मणियों से जड़े प्रकाशित परकोटे, सुंदर भव्य भवन, चौराहे, बाजार, सड़कें, गलियां, हाथी, घोड़े, अगणित रथ और नाना आकार प्रकार वाले राक्षसों के समूह, भीमकाय योद्धा जिनकी संख्या गिनी नहीं जा सकती, अत्यंत चौकसी से नगर की रखवाली कर रहे थे। हनुमान ने निश्चय किया कि रात्रि में अत्यंत लघु रूप धारण कर नगर में प्रवेश करेंगे। मच्छर का स्वरूप धारण कर वे नगर द्वार पर पहुंचे ही थे कि लंकनी नामधारी राक्षसी ने टोका, बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? तुम जैसे चोर उचक्कों का मैं आहार करती हूं। हनुमान ने उसे एक भरपूर घूंसा जड़ दिया तो वह धराशायी होकर रक्त की उल्टी करने लगी। संभल कर उठते हुए बोली, ब्रह्मा ने जब रावण को वर दिया था तो मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान भी बता दी थी। हे तात, मेरे बड़े भाग हैं कि श्रीराम के दूत को मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। कलाकार हैं लखनलाल यादव और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। सर है लखनलाल यादव और साथियों के।

इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोकरंजनी अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये उस पेठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: विदेश

0: डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आप सभी को हमारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराने का। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। कार्यक्रम सुबह सवेरे जिसे आप सुन सकेंगे प्रातः 7:50 पर। सुबह 8:30 प्रसारित होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 9 से 10 बजे तक आनंद ले सकेंगे विविध भारती सेवा के मनोरंजक कार्यक्रम का, विविध भारती के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 10 बजे, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10:05 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। कार्यक्रम आपकी फरमाइश प्रसारित होगा सुबह 10:10।

मिनट पर। हमारी सखी सहेलियों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत, इसे सुने सुबह 10:30 बजे, जिसमें आज की बात का विषय होगा त्याग, सेवा और परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका। साथ ही हमारी बात सखियों के साथ और कुछ फिल्मी गीत। इसके पश्चात सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के मनोरंजक कार्यक्रम। शाम 5:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज की बात का विषय होगा जंक फूड से दूरी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी, वसुंधरा में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम कैसे करें, साथ ही कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम गोधूली होगा शाम 6:05 पर, स्वर होंगे सुमन कल्याणपुर के। शाम 6:30 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम सबरस का आनंद लेंगे शाम 6:50 पर। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज की बात का विषय होगा अपने गांव को साफ रखें। सामूहिक कृषि चर्चा में मुर्गियों को गर्मी से बचाएं, साथ ही लोकगीत, बाजार भाव, मौसम का हाल और श्रृंखला बातें खेती किसानी की। कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। रात 8:30 पर सुनिएगा साहित्य सरिता, जिसमें होगा बैतूल बाजार के युवा कवि प्रसेन मालवी का काव्य पाठ। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम होंगे रात 9 से 10 बजे तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम मेरी पसंद, सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत रात्रि 10:30 पर, कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। रात 11 बजे हिंदी में और रात 11 बजे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री। ओलंपिक खेलों की सूची में योगासन को शामिल करने के प्रयास होंगे, कहा केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। भोपाल में आज होगा जल संरक्षण पर केंद्रित सदा नीरा समागम का शुभारंभ। और आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी पोंग ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में भारत ऑस्ट्रेलिया की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र

0: जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री से जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे परे शांति, स्थिरता तथा समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने कल नई दिल्ली में कहा है कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योगासन देश की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है और विश्वभर में शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का एक माध्यम बनकर उभरा है।
1: योग ये हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासन की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 25 मई तक 2,39,00,000 से ज्यादा मकानों की गणना पूरी हो चुकी है। 1 मई से शुरू हुआ ये काम 30 मई तक पूरा कर लिया जाएगा। नोडल अधिकारी शिल्पा गुप्ता ने बताया कि इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। प्रगणक घर घर जाकर HLO ऐप के जरिए जानकारी दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान जन आंदोलन बन गया है। जनता की सहभागिता से जल संरक्षण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। डॉ. यादव कल उज्जैन में शिप्रा तट पर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के समापन समारोह में मां शिप्रा को 351 फीट की चुनरी अर्पित करने के उपरांत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना के बैंड ने रामघाट पर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य अतिथियों के साथ अंतर्जल यात्रा, श्री शिप्रा महिमा और ये है मोहन की सरकार पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी के घाट पर श्रद्धालुओं को स्वच्छ जल की उपलब्धता आयोजन को पावन बनाएगी। श्रद्धालुओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं।
2: जल संरक्षण के काम कर रहे हैं, वो जल संरक्षण के काम हम नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, नदियों के उद्गम हरेक जगह जल की महत्ता को स्थापित करते हुए जन सहयोग के माध्यम से शासन भी 10,000 करोड़ की राशि का अमृत सरोवर से लेके सही कई प्रकार के जल रचनाओं पे काम कर रहा है, तालाबों पे काम कर रहा है और हमारा प्रदेश तो अब और नदी जोड़ो अभियान की तरफ आगे बढ़ रहा है। नदी में हमारे लिए जीवन, जल में ही जीवन है। ऐसे में नदी जोड़ो अभियान विश्व का सबसे पहला अगर कहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में हो रहा है।
0: पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जलवायु अनुकूल शहरी विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आगामी 30 और 31 मई को भोपाल के पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संस्थान एप्को परिसर में किया जाएगा। सम्मेलन में जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास के संबंध में विषय विशेषज्ञ अपने विचार प्रकट करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भारत भवन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी और सांस्कृतिक उत्सव सदा नीरा समागम का शुभारंभ करेंगे। वीर भारत न्यास द्वारा जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषयों पर केंद्रित ये गरिमामय आयोजन 2 जून तक चलेगा। इसमें देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता करेंगे। इस 7 दिवसीय समागम में भारतीय दर्शन के पंच महाभूत जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित विभिन्न वैचारिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला फूलिया की अध्यक्षता में कल मध्य प्रदेश महिला वित्त और विकास निगम की बैठक हुई। बैठक में

कौशल विकास और संस्थागत सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री सुश्री भुरिया ने निर्देश दिए कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए नियम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा जिसमें महिलाओं की कौशल दक्षता पर परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन ने भोपाल स्थित वन भवन में अत्याधुनिक आईटी ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया। आईटी ट्रेनिंग हॉल के माध्यम से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल तकनीकों, ई गवर्नेंस प्रणाली, आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित कार्य प्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। धार जिले में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति पर है। परियोजना से प्रभावित कुल 89

महिला बाल विकास मंत्री निर्मला फूलिया की अध्यक्षता में कल मध्य प्रदेश महिला वित्त और विकास निगम की बैठक हुई। बैठक में महिला रोजगार, कौशल विकास, संस्थागत सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्री सुश्री भुरिया ने निर्देश दिए कि महिला वित्त एवं विकास निगम को प्रदेश की महिला वर्कफोर्स तैयार करने वाली प्रमुख संस्था के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए नियम एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा, जिसमें महिलाओं की कौशल दक्षता पर परीक्षण कर उन्हें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख शुभ रंजन सेन ने भोपाल स्थित वन भवन में अत्याधुनिक आईटी ट्रेनिंग हॉल का लोकार्पण किया। आईटी ट्रेनिंग हॉल के माध्यम से विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल तकनीकों, ई गवर्नेंस प्रणाली, आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित कार्य प्रणालियों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। धार जिले में विकसित किए जा रहे पीएम मित्र पार्क के अंतर्गत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ निरंतर प्रगति पर है। परियोजना से प्रभावित कुल 89

झांसी रोड में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बालाघाट में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण करने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तिंदौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में कल सर्व शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। श्रोताओ, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है FM 103.1 MHz। पेश है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोके से। इस कार्यक्रम में हम पहला गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है शैलेंद्र, संगीतकार है पंडित रविशंकर और फिल्म का नाम है अनुराधा।

श्रोताओं, क्लासिक नगमों का सफर आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म बम्बई का बाबू से ये गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से संवारा है SD बर्मन ने और इस गीत को गाया है आशा भोसले ने।

आइए सुनते हैं मुकेश और वाणी जयराम के स्वरों में फिल्म छलिया से ये गीत। संगीत है आरडी बर्मन का, बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोके से। अगला गीत शब्द रचना है शैलेंद्र की, मोहम्मद रफी का गाया, एसडी बर्मन का संगीतबद्ध किया, फिल्म काला बाजार से ये गीत।

चलिए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म परख से ये गीत, जिसे लिखा है रविंद्र जैन ने, धुन बनाई है रविंद्र जैन ने, गायक है किशोर कुमार और हेमलता।

क्लासिक फिल्मी गीतों के सफर में सुने ये गीत। स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले के, शब्द है अशाद भोपाली के, संगीत है रविशंकर का और फिल्म का नाम है तू नहीं और सही।

0: देखिए हुजूर मुझसे रह के दूर दूर खेलिए न दिल बेकरार से प्यार का जवाब दीजिए प्यार से
1: बेकरार से आए हम तो ऐसे प्यार से।

0: कर दिए कहाँ बात सुनिए मेहरबान बैठिए तो दो घड़े करार दे प्यार का जवाब दे प्यार दे
1: थोड़ी एहतियात कीजिए दूर ही से बात आप क्यों है इतने बेकरार से बात आए हम तो ऐसे प्यार

चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम पेशकश की ओर। फिल्म बहाना से आवाजें हैं आशा भोसले और तलत महमूद की, संगीतकार है मदन मोहन, गीतकार है राजेंद्र कृष्ण।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों के झरोके से यही संपन्न होता है। FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
0: कार्यक्रम सुबह सवेरे में सूचना इस प्रकार है। ITI बैतूल में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 30 जून तक होंगे रजिस्ट्रेशन। जिला जनसंपर्क कार्यालय बैतूल से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI बैतूल में वर्ष 2026 के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत संचालित ITI में इच्छुक छात्र छात्राएं 26 मई से 30 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया 1 जून से 30 जून तक चलेगी। संस्था प्राचार्य ने बताया कि 8वीं एवं 10वीं पास अभ्यर्थी विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश के साथ आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थी संस्थान में उपस्थित होकर सीधे पंजीयन करा सकते हैं। वहीं नजदीकी कियोस्क सेंटर के माध्यम से भी आवेदन

की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रवेश संबंधी जानकारी विभागीय पोर्टल www.dsd.mp.government.in पर भी प्राप्त की जा सकती है। आईटीआई बैतूल में कोपा में 48 सीट, स्टेनो हिंदी में 48 सीट, वेल्डर 40 सीट, मैकेनिक डीजल में 48 सीट, वुडवर्क टेक्नीशियन में 48 सीट, सोलर टेक्नीशियन 40 सीट, टर्नर 20 सीट, फिटर 20 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 24 सीट, मैकेनिक मोटर व्हीकल 24 सीट, विद्युत कार में 40 सीट और ड्राफ्ट्समैन में सिविल ट्रेड में 24 सीटों की संख्या निर्धारित की है। इन ट्रेडों में एक वर्ष एवं दो वर्ष अवधि के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। प्राचार्य ने इच्छुक विद्यार्थियों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है ताकि उन्हें अपनी पसंद के ट्रेड में प्रवेश मिल सके। अब आइए सुनते हैं ये देशगान।

0: सुबह सवेरे।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए

0: एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वीं विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गेट के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गेट के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
2: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून एक या

0: दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुखपृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रूपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rolls. CBSE rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not

0: TIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
0: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
0: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी।

0: ठीक है, फूलों की।
1: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
0: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
1: वाह जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
0: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है।
1: जी,
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
1: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
0: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ऑटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
1: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
0: जी,
1: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
0: जैसे
1: जैसे लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
0: जी,
1: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
0: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
1: जी,
0: अभिवेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास, जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
1: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
0: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
1: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
0: हाँ, वो क्या?
1: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई, जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
0: ये घटना क्या थी?
1: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
0: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
1: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
0: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल,

0: रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
1: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
0: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
1: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
0: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
1: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
0: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
1: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
0: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने।

0: सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
1: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
2: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले है, घर बाद में।
1: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
2: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के

0: आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
1: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
1: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे, और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं।

0: 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999। स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी

0: बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा, 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
1: हमला करो, दुर्गा माता की जय,
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
2: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
3: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
4: क्या बात कही है?
2: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
3: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नहीं, तू भी बचवाला है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा।
4: मैं जा रहा हूँ।
5: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं नहीं नहीं नहीं।

तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी बैतूल है। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। शाशा तिरुपति और अरिजीत सिंह की आवाज में अतरंगी रे फिल्म से गाना इरशाद का।

बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख और पवित्र त्यौहार है। अटूट आस्था, त्याग और संपन्न की भावना के प्रतीक बकरीद पर्व की ढेर सारी बधाई।

0: रॉकस्टार फिल्म से आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और मोहित चौहान की आवाज में गाना, इशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं नील एंड निकी फिल्म से, सोनू निगम, माँ लक्ष्मी अय्यर, क्लिंटन सरिजो, डोमिनिक सरिजो की आवाजों में अन्विता गुप्तन के बोल, और संगीत है सलीम सुलेमान का।

गर्मी के मौसम से तो हम सब बेहाल हैं, लेकिन अब लग रहा है लव का सीजन भी स्टार्ट हो रहा है। यकीन नहीं आ रहा? आ जाएगा यकीन, अगला गाना सुन लीजिए, लव ब्रेकअप्स जिंदगी फिल्म से, बनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, सलीम सुलेमान का म्यूजिक।

0: हास्य की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनो कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन
1: बहुत ही बुढ़ा किसान एक गीत गाया करता था।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंडाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में

पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं न कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गई। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह

सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह,

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: वाला, तुम गाने में हमको हराया, हाँ, तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: इसे काहे को झगड़ा करना जी? हाँ माँ, वाला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो, एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता, तो फिर कबाब में अड्डे काहे को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: वाला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा, तो हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाता है? ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार।
1: यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म खानदान।
3: नील गगन पर उड़ते बादल, धूप में जलता।

1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन

ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी, तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते ही प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थी, ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। ये वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की ये फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा, सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए, सन 1976 नागिन, सन 1979 जानी दुश्मन और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट

0: ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हिरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

सुबह के 10 बजे है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी, भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय अन्य शहरों की तरह ही अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया है, जो अभी तक का सर्वाधिक तापमान है। भीषण गर्मी का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। दिन में बाजार में सन्नाटा पसरा है। लू के प्रभाव से बचने के लिए जरूरी सलाह भी चिकित्सक दे रहे हैं। गर्मी के चलते कई गाँव में पेयजल की भी समस्या बन गई है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के व्यापक प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के उद्देश्य से जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश द्वारा एलईडी प्रचार रथ रवाना किया गया है। ये प्रचार रथ मंडला पालाघाट होते हुए डिंडौरी जिले पहुंचा, जहां सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। एलईडी प्रचार रथ जिले के 7 विकास खंडों में भ्रमण कर गांव-गांव पहुंचकर आमजन को जनगणना 2027 के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देगा और जनमानस में जनगणना के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करेगा। प्रचार रथ के माध्यम से प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे नागरिकों को जनगणना प्रक्रिया को समझने और उसमें सहभागिता सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। जिला प्रशासन डिंडौरी के सहयोग से जिले के 23 ग्रामीण नल जल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 90,39,000 रूपए की राशि हस्तांतरित कर महत्वपूर्ण पहल की है। मध्य प्रदेश शासन किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसानों तक नवीन और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से जिले के विभिन्न विकास खंडों में किसान रथ का 10 दिवसीय संचालन प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं, उन्नत खेती तकनीकों, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, कृषि यंत्रीकरण संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। किसान रथ के माध्यम से किसानों को ई विकास से उर्वरक वितरण व्यवस्था, खरीफ फसल हेतु बीज उपचार, मृदा परीक्षण, फसल विविधीकरण, प्राकृतिक खेती, फसल सुरक्षा प्रणाली प्रबंधन, कृषि अभियांत्रिकी द्वारा खरीफ पूर्व खेतों के समतलीकरण आदि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने, सोना नहीं खरीदने सहित अन्य अपील को आमजन ने सकारात्मक तौर पर लिया है। अब लोग वाहनों का उपयोग कम कर रहे हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी भी साइकिल, स्कूटी सहित अन्य दो पहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। कार्यालयों में वाहनों की कतार नहीं लगती है, साथ ही अधिकांश बैठकें भी वर्चुअल माध्यम से की जा रही हैं। इसी तरह बाजार में भी ज्वेलर्स की दुकानों में भीड़ कम हो गई है। व्यापारी भी प्रधानमंत्री की अपील में सहयोग कर रहे हैं। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी अंजू पवन भदुरिया द्वारा पेट्रोल और डीजल की बचत, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और शासकीय वाहन चालकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि

सुरक्षा संरक्षण और वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिगत शासकीय वाहनों का उपयोग केवल शासकीय कार्यों के लिए किया जाए। अनावश्यक वाहन संचालन और बिना अनुमति वाहन उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा जिले में 5 मई से 5 जून तक ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण आरोह 2026 के अंतर्गत मां नर्मदा नदी तट पर विशेष संध्या एक्टिविटी में डांस एरोबिक्स का आयोजन किया गया। इस मौके पर एरोबिक्स, योग, सामूहिक फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके परिजनों, स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी विकासखंड मुख्यालयों में भी ग्रीष्मकालीन खेल प्रतियोगिताएं संचालित की जा रही हैं। तिंदौरी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत विभिन्न विकासखंडों में समारोह पूर्वक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 750 से अधिक जोड़ों का विवाह रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने विवाह समारोह में शामिल होकर वर वधुओं को शुभकामनाएं दी। जल संचय जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत जिले में कुल 5,52,638 जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। कृषि विभाग, वन विभाग, उद्यानिकी, स्वास्थ्य विभाग, एनजीओ प्रदान, महिला और बाल विकास, पीएचई, जल संसाधन विभाग, इन सभी विभागों के समन्वय से वर्षा के पानी को सहजने के लिए लाखों रिचार्ज पिट, सोखता पिट बनाए जा रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आपने सुनी डिंडोरी जिले की चिट्ठी, आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया, वाचिका दीपा सिंह। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया जा रहा था।
1: ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।
2: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना और हमेशा हमारे साथ रहते हैं डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। डॉक्टर सचिन चित्तावार भोपाल के जाने माने डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ हैं। सर नमस्ते।
3: नमस्कार
2: सर। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं कि कई लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं, काम भी कर रहे हैं, दवाएं नियम से ले रहे हैं और जो भी परहेज होते हैं वो सारे किए जा रहे हैं, लेकिन डायबिटीज है कि कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही, क्या करा जाए?
3: देखिए, एक ऐसा होता है कि आप डॉक्टर को दिखा लेते हैं, दवा लेते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं आता। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि हमने ध्यान नहीं दिया कि आपको पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन है। दूसरा, या तो आप स्टेरॉइड की कोई दवा पे हैं, किसी कारणवश डॉक्टर ने दवा दी है, वो लेना तो जरूरी है, पर आप अपने मधुमेह रोग जगत सबको बताना ही भूल गए। तीसरा आपका ये कारण हो सकता है कि आप दवा तो लेकर आ जाते हैं पर आप अड़ोसी पड़ोसी मामा ताऊ भाई की बातें ज्यादा सुनते हैं। वो कहते हैं कि आपके गुर्दे फूक जाएंगे। दवा नहीं खाने से और शुगर नियंत्रित ना होने से गुर्दे खराब हो सकते हैं। दवा खाने से कैसे गुर्दे खराब होंगे? आप दो गोली लिखी है तो आप उसकी एक ही खाते हो, कभी कभार आप चौथा ही करते हो और बड़े शान से बताते हो जब डॉक्टर के पास आते हो हम तो आधी ही गोली खा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। उसके साथ साथ फिर आप जैसा हमेशा अपन बात करते हैं, आपके जीवन में अगर तनाव ग्रस्त है तो जो ये हर पल आप चिंतित तनाव ग्रस्त रहते हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। फिर आप व्यायाम नहीं करते, आप बोलते हैं कि हम तो यार अब व्यायाम तो नहीं हो सकता हमसे, तो वही उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की सारी बातों को अगर आप मिला लें, खान पान का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर शुगर नियंत्रित नहीं है, वैसे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता खान पान पे, अगर शुगर नियंत्रित नहीं है, दवा भी खा रहे हैं फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। अगर वो बोलते हैं कि इंसुलिन की आवश्यकता है तो उसके लिए कभी मना मत करिए, क्योंकि आपके जीवन में खाली पेट शुगर 100, भरे पेट 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% होना नितांत आवश्यक है।
2: सर कई लोग ऐसे हैं बड़े लापरवाह रहते हैं, यदा कदा दवा खा ली और अपना मनमौजी जीवन जी रहे हैं और डायबिटिक हैं, पर डायबिटीज उन पर कृपा बहुत बनाए रखती है, वो बढ़ती नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कितना खतरनाक है ये?
3: देखिए, शुरुआती दौर की डायबिटीज जरूरी नहीं है कि हर आदमी को डायबिटीज उस पैमाने पे आ जाए जहां आपको खूब सारी दवा या इंसुलिन की आवश्यकता पड़े। पर शोध ये बताते हैं कि जब भी 6.5 के ऊपर होता तो हम डायबिटीज कहते हैं और 7 के ऊपर जब भी HbA1c रहने लगता है तो भले ही डायबिटीज नियंत्रित हो आपके जीवन में दुख आ सकते हैं। आंखों का पर्दा खराब हो सकता है, गुर्दा खराब हो सकता है, पैरों की नसों खराब हो सकती हैं। इसलिए आपको इस बारे में सोचना चाहिए, भले ही आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा सर पे नहीं है पर उसका नियंत्रण में होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: वाकई सर, ये चीज हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनके जहन से ये चीज निकल चुकी होगी, ये गलतफहमी अगर उनको है कि हमारी नॉर्मल डायबिटीज

0: रहती है, हम तो बहुत खुश हैं। सर, बहुत दिनों तक डायबिटीज अगर अस्थिर रहती है और व्यक्ति लापरवाह रहता है, तो जैसे आपने बताया कि गुर्दे खराब हो सकते हैं, आंखों का पर्दा खराब हो सकता है, और क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं?
1: देखिए, लंबे समय तक अगर शुगर नियंत्रित नहीं रहता है तो समय समय पे आपको छोटे फंगल इन्फेक्शंस, पेशाब में जलन, खुजली, कहीं पैर में खुजली, खा, दांत की समस्या आ गई, आपको निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता तो आपकी कम रहेगी क्योंकि शुगर नियंत्रित नहीं है। अगर शुगर नियंत्रित नहीं है तो आप अपने घर के दरवाजे खुले करके सोएंगे तो मान के चलें कि चोर तो आके चोरी करके चला जाएगा। तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवादी इन्फेक्शन है, ये चोरों की तरह है, ये राह देख रहे हैं।
0: सर, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है?
1: देखिए, जब भी नसों में असर आता है, लंबे समय तक शुगर अगर नियंत्रित ना रहे तो नसों के जो नैसर्गिक गुण है होते हैं वो खत्म होने लगता है। तो जो नसों के थ्रू जो एक चेतना प्रवाहित होती है वो कहीं कहीं बैकफायर करती है, तो आपको झुंझुनी, पिंस, चमक ऐसा महसूस होने लगता है। इसके बहुत सारे प्रकार हैं। अगर एक नस में हो गया या खूब सारी नस में हो गया या केवल सिमेट्रिकल सेंसरी है, तो ये सारे प्रकार बहुत सारे हैं, पर इसका मुख्य कारण शुगर नियंत्रण ना होना है।
0: अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। यह कार्यक्रम आप प्रति बुधवार इसी समय सुनते हैं। आप अपने विचार हमें व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8887811-2343। नंबर पुनः सुने 8887811-2343। अब दीजिए मनु सक्सेना और डॉक्टर सचिन चित्तावार को अनुमति, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी बैतूल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवान शहर से। फरमाइश करता है सुरिंदर संधु, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीक्षा संधु और मैक्स। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म बचना ए हसीनू से ये गीत। इस गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने, संगीत से सवारा है विशाल शेखर ने और आवाजें हैं के और शिल्पा राव की।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश की अगली पेशकश है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। इस गीत को सुनना चाहा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां ने। इस गीत को आवाज दी है सुनिधि चौहान और नीरज श्रीधर ने, लिखा है इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है प्रीतम ने और फिल्म का नाम है लव।

चलते हैं कार्यक्रम में अंतिम व्हाट्सएप फरमाइश की ओर। फिल्म एक दीवाना था से बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है AR रहमान ने, आवाजें हैं लियोन डिसूजा और सुजैन डी मेलो की। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें प्राप्त हुआ है ग्राम महतगांव बैतूल मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है आकांक्षा डिगर से, अभिषेक, अनिकेत, आयशा, राज, तुषार, अंजलि डिगर से।

श्रोतो, इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। पेश है कार्यक्रम महिला जगत।

0: रेडियो सुन रहे सभी सखियों श्रोताओं को रश्मि मासोदकर का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज है बुधवार जिसका रहता है आप सभी को इंतजार, क्योंकि आज के कार्यक्रम में लेकर आए हैं हम हमारी बात सखियों के साथ। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे अखंड सौभाग्य का पावन पर्व वट सावित्री और साथ ही साथ सुनवाएंगे कुछ मधुर गीत और कहेंगे आपसे अपने दिल की बात। सखियों, बकरीद के अवसर पर आज हम त्याग सेवा और परिवार निर्माण में महिलाओं की भूमिका इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सखियों, सबसे पहले ईद उल अजहा यानी बकरीद की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह एक ऐसा पर्व है जो हमें सिर्फ कुर्बानी नहीं बल्कि रिश्तों की अहमियत, सेवा की भावना और इंसानियत का असली अर्थ समझाता है, जो अपने से पहले दूसरों की खुशी और भलाई के बारे में सोचता है। यही सच्ची इबादत है। और अगर हम अपने आसपास देखें तो यह भावना सबसे ज्यादा महिलाओं में दिखाई देती है। हम महिलाएं सुबह की पहली किरण से लेकर रात के आखिरी दिए तक काम करती है, अपने परिवार की छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती है, खुद रसोई की गर्मी में तपकर पूरे परिवार के लिए मिठास और खुशियां लाती है। उनका यह मौन त्याग ही परिवार को बिखरने से बचाता है। माँ बनकर बच्चों को संस्कार देती है तो पत्नी बनकर हर सुख दुख में साथ निभाती है और कभी बेटी बनकर घर में मुस्कान बिखेरती है। और सखियों, अक्सर हम महिलाओं का त्याग शब्दों में नहीं दिखता, लेकिन उसी त्याग से परिवार की नींव मजबूत होती है। यह पर भी तो हमें यही सिखाता है। और हम महिलाएं तो जीवन भर अपनी छोटी छोटी खुशियों की कुर्बानी देकर अपने परिवार को संवारती रहती है। हम खुद भले ही तकलीफ सह लें, लेकिन अपने परिवार पर आंच तक नहीं आने देती। कभी अपनी इच्छाओं को छोड़कर तो कभी अपनी थकान को छिपाकर अपनों की मुस्कान के लिए हर मुश्किल सह लेती है। और बात की जाए परिवार की, जो बनता है प्रेम, धैर्य, अपनापन और संस्कारों से। और जब इन सभी भावनाओं को एक साथ जोड़ने का काम हम महिलाएं करती हैं, तो हमारा घर स्वर्ग से कम नहीं रहता। सच तो यही है कि हम महिलाओं का प्रेम और त्याग ही परिवार को जन्नत जैसा सुकून देता है। आज की महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं है, वे शिक्षा, समाज सेवा, नौकरी और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमारे समाज में कई महिलाएं ऐसी हैं जो गरीबों की सहायता करती हैं, बीमारों की सेवा करती हैं, दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटती है। बकरीद का भी तो यही संदेश है कि जरूरतमंदों की मदद करना। आज बस आवश्यकता है कि हम महिलाओं के त्याग और मेहनत को समझें, उन्हें सम्मान दें, उनके सपनों को भी उतनी ही अहमियत दे जितनी की वो चाहती है। महिलाओं का समर्पण ही सबसे बड़ी पूंजी है। और सखियों, ये तो थी हमारी आज की बात। और एक बार पुनः आप सभी को बकरीद की ढेरों शुभकामनाएं। और अब कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अब सुनते हैं फिल्म दिल परदेसी हो गया से सुनिधि चौहान की आवाज में ये मधुर गीत।

सखियो, भारतीय संस्कृति में हर त्योहार रिश्तों की मिठास और भावनाओं की खुशबू लेकर आता है। ऐसा ही एक पावन पर्व है वट सावित्री। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने प्रेम और साहस से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस यमराज से ला लिए थे। तभी से यह पर्व सुहाग, परिवार और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। हर रिश्ता विश्वास और साथ ही मजबूत बनता है। बहनों, जब जीवन में कठिन समय आता है तब एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। यह पर्व भी हमें यही सिखाता है कि हर रिश्ते में प्रेम और भरोसा हमेशा बना रहना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता भी ऐसा ही है ना बहनों? जब उस रिश्ते में सम्मान, समझ और अपनापन हो, तभी तो यही रिश्ते की असली मजबूती है। और सखियों, अब इन्हीं भावनाओं से जुड़ा हुआ मधुर गीत सुनते हैं। फिल्म सैनिक से सुहासिनी की आवाज में ये दिलकश नगमा।

सखियो, बरगद का जो विशाल पेड़ है, ये अपनी छाया से अनेक जीवों को आश्रय देता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और पूजा को एक दूसरे से जोड़कर रखा है त्योहारों के रूप में। और सखियो, यह ऑक्सीजन देने के साथ साथ वातावरण को शुद्ध रखने में भी सहायक होता है। हमारा जो भारत देश है, वह त्योहारों और परंपराओं का देश है। यहाँ हर पर्व का रंग अलग है, हर राज्य की अपनी मिठास है। फिलहाल हम बात करते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर सखियो, यह पर्व एक जैसे ही तरीके से मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या को इसे धूमधाम से मनाते हैं। महिलाएं सुबह सवर कर वट वृक्ष के नीचे इकट्ठा होती है। पूजा में रोली, सिंदूर, अक्षत, भीगे हुए चने, फल विशेषकर आम और कटहल को पूजा में शामिल किया जाता है और प्रसाद में खीर पूड़ी बनाई जाती है। वृक्ष को महिलाएं कच्चा सूत लपेटकर 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करती है। कथा के साथ साथ लोकगीत भी गाए जाते हैं। और सखियों, त्योहार भी तभी अच्छे लगते हैं जब बातों के साथ थोड़ा संगीत भी हो जाए। तो इन्हीं खुशियों के बीच सुनते हैं फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से लता जी की आवाज में गाया ये प्यारा गीत।

सखियों सच ही तो है, रिश्तों की मिठास और अपनों का साथ जीवन को खास बना देता है। और अब हम बढ़ते हैं राजस्थान की ओर। इस दिन महिलाएं रंग बिरंगे लहंगे और पारंपरिक आभूषण पहनती है। यहाँ की सबसे बड़ी बात जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती है, वो छोटी बहुओं और बेटियों को आशीर्वाद देती है। साथ ही सखियों बांस की टोकरियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें 7 प्रकार का अनाज रखा जाता है। और हाँ सखियों, पूजा के बाद बांस के बने छोटे हाथ के पंखों से वट वृक्ष की हवा की जाती है और ये यहाँ की मान्यता है। ऐसे ही सखियों, महाराष्ट्र में यह पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। हल्दी कुमकुम की परंपरा यहाँ बहुत खास मानी जाती है। यहाँ की विशेष बात है कि जो महिलाएं हैं वो नववारी साड़ी पहनकर बरगद की पेड़ की पूजा करती है। पूजा के पश्चात 5 सुहागिन महिलाओं की ओटी गेहूं और आम के फलों से भरी जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और अब सखियों, कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सखियों अब बारी है हमारा प्यारा प्रदेश मध्य प्रदेश की। यह पर्व यहाँ शहरी और ग्रामीण महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से मनाया जाता है। पारंपरिक लोकगीतों के माध्यम से वट पेड़ की के नीचे एकत्रित होकर अपनी प्राचीन विरासत को जीवित रखते हैं। यहाँ की खास बात है कि कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि भावनाओं से जी जाती है। कहीं ढोलक बजती है तो कहीं घर की बनी मिठाइयों से खुशबू पूरे आंगन को महका देती है। महिलाएं सुबह सुबह 16 श्रृंगार करके लाल साड़ी पहनती है तो कोई हरी चूड़ियों से अपने हाथ सजाती है। फिर शुरू होता है बरगद के पेड़ के चारों ओर धागा लपेटते हुए अपने परिवार की खुशहाली की कामना करना। सखियो हम आपको बता दे बरगद का जो पेड़ है वह दीर्घायु शक्ति और स्वास्थ्य का प्रतीक है, जो हमारी संस्कृति पेड़ों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति प्रेम का संदेश देता है। वट सावित्री हमें यह परंपरा नहीं बल्कि विश्वास प्रेम और धैर्य का भी संदेश देती है। हम तो इस वट सावित्री यही प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन भी बरगद की तरह मजबूत और खुशियों से भरा रहे। और अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत।

अब कार्यक्रम में वक्त है आपको कल के आकर्षण बताने का। कल का कार्यक्रम भी होगा बेहद खास, इसलिए सुनना मत भूलिएगा हमारी रेडियो सखी लीना भुजाड़े के साथ सुबह 10:30 बजे, जिसमें आज की बात का विषय होगा डिजिटल साक्षरता और महिलाएं। मुलाकात में चर्चा होगी एक नए मेहमान से, साथ ही आपको सुनवाएंगे मन भावन गीत। कल फिर मिलेंगे एक नए अंदाज और प्रस्तुति के साथ। तो सखियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो अनुमति दीजिए आपकी रेडियो सखी रश्मि मासोदकर को। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। अब कुछ ही पलों में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

हम सुन रहे थे आबसार एल्बम से यह गजल, जिसे गाया महिमा ने, सरदार अंजुम ने इसे लिखा और सोमदत्त बट्टू ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो कि है हिंदुस्तान क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज है, हसरत त्रिमिजी ने इसे लिखा है और चित्ता रॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के बोल और फैयाज शौकत के संगीत के साथ ये खूबसूरत सा नगमा।

कौन फिल्मी गीत एंड गजल एल्बम से हम सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। मधुकर राजस्थानी के बोलों से सजा हुआ और मन्ना डे के ही संगीत से सजे हुए इस नज्म को आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो कि है ये मिलन ख्वाब सा इस एल्बम से तलत अजीज की आवाज में। सरदार अंजुम ने इसे लिखा और तलत अजीज ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में सुन रही थी ये नगमा, जिसे सबा अफगानी ने लिखा, इकबाल ने संगीतबद्ध किया। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उषा टंडन की आवाज में दाग के द्वारा लिखे इस नगमे को।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एल्बम गजल से एक गजल जो गाई है प्रतिभा सिंह बघेल ने। कमलेश सोनावाला ने इसे लिखा, राजू राव प्रमिला राव ने इसे संगीतबद्ध किया।

मोहम्मद रफी की आवाज में दानिश के बोलों के साथ इकबाल के संगीत के साथ सुन रहे थे हिंदुस्तानी गजल एल्बम से ये नज्म को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग की अंतिम नज्म।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के

0: सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50.27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम यादों की महफिल में। हर प्रतिदिन हम सजाकर लाते हैं यादों की महफिल किसी एक खूबसूरत सी याद के साथ। तो आइए सुनते हैं आज के यादों की महफिल कार्यक्रम के इस खूबसूरत से नगमे को।

हम सुन रहे थे छोटी सी बात फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा। आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

0: भजन चुराए चुपचे से मनाए।
1: हम सुन रहे थे ये गीत आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में, योगेश के बोल सलिल चौधरी के संगीत के साथ। अग्नि परीक्षा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ सुनते हैं गीत।

हम सुन रहे थे अग्नि परीक्षा फिल्म से। यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा आदमी फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, योगेश के बोल हैं, राहुल देवर्मन का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
6: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
6: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है यादों की महफिल।

लगा लगा लगा के धूप में राह चांद दिन में रात हो।

0: हम सुन रहे थे रजनीकंदा फिल्म का ये गीत मुकेश की आवाज में योगेश के बोलों के साथ सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

हम सुन रहे थे मंजिल फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और आरडी वर्मन के संगीत से सजा हुआ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे किसी से ना कहना फिल्म से। आशा भोसले की आवाज है, योगेश के बोल है, बप्पी लहरी का है संगीत।

हम सुन रहे थे अपनी पराई फिल्म से यशुदास आशा भोसले की आवाज में योगेश के बोलों को, जिसे बप्पी लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, योगेश के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है चालबाज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है ना, अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियां जैसे अपनी धारा के संग चलती है, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए, तो जीवन के दिन कहाँ छूटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे। और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ, जो कि भेजे हैं आप सबने हम तक। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी ही लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियां निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें, तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बहती धारा के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देख सकते हैं, जहाँ ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है। जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ले अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए हैं, हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हमें भी जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसीलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे कौर श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयान करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। जहाँ थोड़े में खुशियों की ताल जीवन के अविरल चलते सफर में आने वाले भविष्य को किसी जरूरतमंद की ओर अपना हाथ बढ़ाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे गाने मिलते हैं या नहीं। तो हर बार की तरह मेरे पास तो दो प्रश्न है आपके लिए। पहला प्रश्न बड़ा सरल सा है कि कुछ शब्द होते हैं जो शब्द एक जैसे होते हैं, यानी उनको पलट दो तो अलग हो जाते हैं, उनका अर्थ बदल जाता है, पर खुद बनते उतने ही अक्षरों से हैं। जैसे अगर मैं कहूं दया, और उसका ही उल्टा हो जाता है याद। दया याद, अगर हम

किसी पर दया करे तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा। राही हीरा, तो जो राह में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस सृष्टि पर घूम रहे हैं, तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर साझा कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ। तो जब जो शब्द याद आए, तीन अक्षर का, दो अक्षर का, जो भी याद आए, जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ, बताइएगा इस गीत के गीतकार कौन है।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देववर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरू सुल्तानपुरी। और बहुत बढ़िया बात है। और हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन से शब्द है जो उसका उल्टा है, लेकिन अर्थ भी अलग है लेकिन साथ में मिल जाता है। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा कि इबारत से ही शब्द ताल लता, ताल मिलते ही लता गा उठती है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। उसके साथ हमारी श्रोता ने लिखा है सीमा मासी, यानी सीमा नाम की मासी जिसकी होगी वो सीमा मासी बड़े आराम से हो जाती है। खीरा राखी, धारा राधा, दाग गदा, मीना नानी, बहुत सारे शब्द इन्होंने हमें दिए हैं। और उसके साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे और शब्दों के बारे में हमें बताया है। जैसे उन्होंने लिखा है कि एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा शब्द दिया, राधा धारा, तो जो धारा के साथ बह उठे वही तो राधा का हो जाएगा। इसे हम धार्मिक परिवेश में ले जाकर इस तरह से समझ भी सकते हैं। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होंगे, तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफर में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नजर आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियां और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही छोटे एक एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियां बड़ी जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप जरूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु, कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मजा आया पढ़कर। ये सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे, जी बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं, इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या काये बोरात नर वा पाए बोराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा राह हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियां, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे जिंदगी का सफर आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदी अपनी धारा के साथ निरंतर चलती है, वैसे ही पल भर नहीं रुकती दूसरों के कदम के लिए, अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठे तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियां, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफर चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफर की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो जरूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो, सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ, बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

0: जल।
1: ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहां पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मजा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं हमारी सीखों के लिए। कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख की जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने एक बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य जरूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ।

कभी धैर्य और धीरज खोना तो इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, हमें बोला गया था चाहे ज्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आंख में मत देखो क्योंकि उसकी ना फिर नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नजर में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती है जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौगु ने पढ़ा था, तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं, और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई सीख दी होगी, उसे जरूर बताइए। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, बताइएगा इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे सफर फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज में, इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी है अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। ये बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आए। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरु जी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द एक प्यार भरी मुस्कान दे दो। किसी को अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगी तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करो, जिसे मैं आज तक निभा रही हूँ। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाजा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमारे पापा तो हमेशा कहते थे, एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे, किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह आना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात। वही पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूँ इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूँ, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूँ। बहुत सही बात कही है। पिताजी ने कहा था, बेटी किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना, वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहे आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून, बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था जरूर से बताइएगा। और ये जो

अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं। ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो थोड़े समय के लिए। सही,

हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में हजरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जय किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है, और आप सबने

बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूं, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए, और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उठ कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दीदी जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था, तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुप कर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुप कर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है, जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माताजी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में 3 बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती, और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ, कभी कोई भी हो सबकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं, मदद जरूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं, पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है हम तो अनाथ आश्रम में दे आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहे गुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ, मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर जरूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारे श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखा है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आंखें भी आंखों के बैंक में डोनेट कर दी है, आईज भी आईज बैंक में डोनेट कर दी है। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आंखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं कौन चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? जरा इसका उत्तर आप दीजिएगा, और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है, गायक कलाकारों के नाम बताइए, और बताइए क्या बच्चों में की जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।

0: जाने कहाँ जम गया है,
1: इसे है फिकर इसे क्या पसंद, प्यार के जहाँ में रजामंद जब हम तुम सबके कदम देखो रम रम बम।

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी। और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफर का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया, अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में।

क्योंकि एक पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वहां आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी जहां काड़ वहां रबाड़, जो आपके पास है उसकी जरूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी। तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियां और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा है, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया, हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है जी। मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीजें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटोस्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती है। बहुत बढ़िया बात है। बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं, व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा, नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले फिल्म से लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव वर्मन के संगीत के साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए विधि प्रवीण जैन को, नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज

चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सबके बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है। हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए सबके लिए अच्छा।

0: क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी। गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नजरिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे।
1: मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने, दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों व पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि परिवार और प्रियजनों का हालचाल पूछते रहें और इन मुश्किल दिनों में संवेदनशीलता के साथ एक दूसरे

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधि दी जाएगी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा जाएगा, जिनमें 199 छात्राएं शामिल हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति का नाथुला दौरा रद्द करना पड़ा था। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें करीब 2000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि योग और खजुराहो दोनों ही हमारी महान भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।
1: योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार घर घर योग हर व्यक्ति योग इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है।
0: इस बार 21 जून का मुख्य योग कार्यक्रम कोलकाता में होगा, जिसकी थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। भोपाल के भारत भवन में आज सदा नीरा समागम का शुभारंभ हुआ। जल संरक्षण, पर्यावरण और भारतीय संस्कृति पर केंद्रित यह 7 दिवसीय कार्यक्रम 2 जून तक चलेगा। इसमें इसरो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ विमर्श करेंगे। शाम को नृत्य नाटिका, लोक गायन और नौसेना बैंड की सिम्फनी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज माता रमाबाई अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि माता रमाबाई ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर वंचितों के उत्थान और शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे पर आरोप है कि उन्होंने 3 छात्रों को रसायन विज्ञान के लीक प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं दूसरे आरोपी पुणे के कोचिंग फैकल्टी तेजस शाह को भौतिक विज्ञान के लीक प्रश्न मिले थे। इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 49 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इन दिनों गर्मी का कहर जारी है। कल 16 शहरों में पारा 44 डिग्री के पार चला गया। खजुराहो में तो पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। आज भी निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि 29 मई से आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है और जून के दूसरे हफ्ते तक मानसून भी दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में ग्रीष्मकालीन सर्वे में पूर्व और पश्चिम वनमंडल में कुल 148 गिद्ध दर्ज किए गए हैं। प्रदेश की पुलिस में कंप्यूटर संवर्ग के 89 पदों पर भर्ती के लिए सफल उम्मीदवारों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 7-9 जून तक भोपाल के लाल परेड ग्राउंड और जबलपुर के रांझी स्थित परेड ग्राउंड पर होगी। पन्ना में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 27 मई से 2 जून तक जिले के 191 तीर्थयात्री श्री द्वारका सोमनाथ जी की यात्रा करेंगे। और आगरमालवा जिला चिकित्सालय में आयोजित बैठक में आगामी सिंहस्थ के दौरान जिला चिकित्सालय में 300 अतिरिक्त बेड की मांग शासन को भेजे जाने पर चर्चा की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा

0: के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनोमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू

0: आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरे संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरल में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जाँच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुत्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा पैचू बावरा फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सहेली सुनने वाली हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरंग तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है।
2: आजकल
3: सखियों पूरे पसीने में हो रही है, ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी है, इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है। और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: होते रहना चाहिए। और गर्मी के जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें,
3: बिल्कुल
2: तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और जरूरत ना हो तो भर दोपहर में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
3: है ना।
2: और साथ ही
3: 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और
2: बिल्कुल
3: 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है, तो पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने
2: बिल्कुल अपने को पूरा ढक के रखें, जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है, ककड़ी है, इस तरीके जो पानी वाले जो फल हैं, जो सैलेड हैं, वो आप जरूर खाएं, और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिएं, बहुत ज्यादा जरूरी है समय अपने आप को बचा के रखना।
3: जी, और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी है, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तालाब होना ना हो, पर अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में
2: ले,
3: और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी बना ले,
2: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज
3: जी,
2: तो इसलिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
3: हल्का
2: वगैरह।
3: और बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत करेंगे।
2: तरह तरह के चावल के व्यंजन
3: आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या, तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि किस तरह का,
2: क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं।
3: हाँ बिल्कुल,
2: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में। तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा व्यंजन है बहुत ज्यादा पसंद है जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
3: बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं एक आप तक पहुंचे हैं, तो आप बताइए इस शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं, और क्या आपको लगता है ये
2: आप क्या सोचते हैं,
3: क्या सोचते हैं इसके बारे में।
2: सकारात्मक तरीके से भी समझा जा सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो सकते हैं,
3: और उसकी वजह से कई सारी जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने उसको जिया है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए बुजुर्गों में जो एक

0: मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं, बड़े मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षण। अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए, इसके सकारात्मक विचार भी
1: हर चीज के दो पहलू होते हैं,
0: गुण हर एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए कि
1: इसमें नकारात्मक पहलू क्या है, क्या है और सकारात्मक क्या है। और साथ ही आज हम बात करेंगे साड़ियों संसार लेकर आए हैं,
0: तो साड़ियों के संसार आज कहाँ चलने वाले
1: हैं। आज हम साड़ी लेकर आए हैं, कलमकारी साड़ी जो आंध्र प्रदेश की है।
0: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, मुझे तो पूरा विश्वास है। तो बहुत सारे संदेश लिखने हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
1: तो गीत सुन लेते हैं पहले।
0: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी।
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने।
0: बिल्कुल।
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए हैं कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए तो
1: हाँ,
0: बहुत
1: गरिमामयी
0: लुक आए। तो कलमकारी साड़ियां कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती है, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियां हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती है, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत सुंदर
1: बहुत सुंदर लगती हैं।
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी,
0: जी
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का तकनीक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहां तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
0: जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियां कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं।
0: जी,
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृतियों की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
1: जी, कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं।
1: हाँ।
0: हम जानते ही नहीं कि साड़ी अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार

0: जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है। और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है
0: जी। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है, फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं
1: जी। कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्की डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर
0: बस
1: निकाल देना
0: हाँ
1: है। और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आंच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे करना है।
0: बिल्कुल। और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसकी जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और
0: बिल्कुल
1: ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती है कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी
0: बिल्कुल
1: बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं
1: लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पर।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन
1: नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है। बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल, और ये स्मार्टफोन ना आरती हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से भी परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी। जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं, तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चल रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं। ये इस तरह की रिपोर्ट आई है।

0: और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा हो रहा है।
1: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जैसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है
0: और हम शिकायतें करते रहते हैं आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
1: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
0: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुककर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है, और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गांव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां इनलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे
0: तो,
1: गेम बना रहे ना वो लोग कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है। जैसे कि बच्चों में होता है, वैसे बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
0: तो ये और उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपने पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से,
1: और सबसे बड़ी बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके के वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल, और इसी को लेकर देखो ना कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं, वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं, मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल, और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार, जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था, तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी, जब से आए नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले, इससे सीखा उससे सीखा ज्ञान का पान कर लिया, अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं, नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बतियाते हैं, डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल, डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोजकर खाते हैं, उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है,
0: क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
1: जी,

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला जी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना, पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं, और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। साथ में कहती है फायदा तो मुझे यही नजर आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज का एक संतुलन देखिए जरूरी है।
1: ये जो चीजें हैं इनकी ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी है, अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीजों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीजों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल ये हम भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीजें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीजें को करें, तो कोई चीज इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि वो फायदेमंद है, बल्कि वो अपना दवाइयां मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पे, बहुत फायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीजें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीजें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि हम ये चीज कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीजें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सही कहा। और जो अकेले रहते हैं घर में सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं, उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
1: जी,
0: क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं, यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं, और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: बस अगर उसका सही तरीके से संयमित इस्तेमाल
1: के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीजें हैं
0: जी।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है, और बताते हैं कि वो मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया, अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, इसके अलावा वो विविध त्योहारती भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
0: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है, फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता, तो आलोचना ऐसे ही तिक्त रस युक्त ऐसी चीज है। जो किन्तु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है और हमें आलोचना

0: घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव न हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे।

नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपनी कमी को सुधारने में मदद कर सके। तो अब क्या करना चाहिए, एक गीत सुनना चाहिए, चलिए।

ले सकते हैं। और साथ ही अब इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी

0: आटे को कोरा भून ले जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डाले, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डाले और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम हैं, काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बढ़िया लगती होंगी। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं।
0: चलिए
1: तो अब मैं बताते हैं कि चावल का डोडा इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारे समय की जो
1: समय है, सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गर्व की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई हैं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नजदीक में आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहां पे भी हुई है। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहां से मैं आई हूं वहां पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है वो डेफिनेटली हर एक चीज में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूं क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज जो 1923 में बनी थी और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गांव में है जहां पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहां से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूं। और जिस तरह से काम हमारी संस्था हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहां से थोड़ी ऐसी चेंज आई एक्चुअली वीकेंड से कि वहां पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्हें मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं जो लाइफस्टाइल होती है वो आपको काफी एज ए नो टीन एजर काफी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज ये कल्पना थी कि हम ऐसा करें तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला व्हाइट तो पता चला एप्रन भी व्हाइट होता है और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहां से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफी सीरियस स्टडीज और हार्ड वर्क। आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूं उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आंखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो. ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी. मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहां से शुरू हुई. रेडियोलॉजी की ब्यूटिफुल चीज ऐसी है कि हमें सब दिखता है. हम डार्क में भी देख सकते हैं. एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है. इट्स अ ब्यूटिफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है. अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सोल्यूशन पे भी उतनी गहरे से काम कर सकते हो. आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सोल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है.
0: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं.
0: ओह, इकबाल फिल्म का गाना है.
1: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है.
0: क्या बात है, सुनते हैं.

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहां से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर एपीजे कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूं 200 पेशेंट देखती हूं तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूं कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: एक ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आए और होलिस्टिक जो मेडिकल

0: है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आए और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो, तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर है, ऑलरेडी जिनको बेटी है, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करे, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोले या ना बोले, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचू, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीजें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज ए चाइल्डहुड, कि जो लेडीज थी वो ज्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज्यादा से ज्यादा लोग कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है, आपको आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉल्वमेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं। शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वो कोविड से शुरू किया है। फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आईसीयू पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आईसीयू डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ, जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे

0: जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था, हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपके वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है. ऑफकोर्स पूरी सीएम से, डिप्टी सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो टेली आईसीयू टेलीमेडिसिन का था, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
1: क्या बात है.
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है, जो 2014 में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंपलिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा. और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए, बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है, वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे. यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं.
0: जीतेंगे जीतेंगे, ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
1: अच्छा,
0: है.
1: अच्छा.
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे. तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ना, आप इसे प्ले कर सकते हैं.

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि सीपीआर जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहां पर मैं ऑलरेडी सीपीआर क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहां पे मैंने सीपीआर तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला सीपीआर मैंने गांव में किया था जहां पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और अचानक क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहां पे मैं भी पहुंची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि ये लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहां पे सीपीआर किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सरवाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सरवाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये बीकेसी हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को जमीन पे डाल के रोड पे भीड़ लगा के बैठे हैं। तो मुझे रियलाइज हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया, मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, सीपीआर किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। आईसीयू ने बोला आपने राइट ली, उनको सीपीआर दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको सीपीआर किया, वो स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत खराब हो गई थी वहां पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना, फ्लाइट में थोड़ी पैनिक हो जाता है, तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहां पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए, तो फिर वही होता है ना डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको सीपीआर किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन ये कितनी जरूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में सीपीआर देके लोगों की जान बचाई, आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो लाइक कि जो सीपीआर ट्रेनिंग था हमारे लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूं, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारे ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत सीपीआर दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स, तो यू नो उस टाइम जो इसका है। तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर सीपीआर किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी सीपीआर किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी वो भी एमओएस की मिनिस्टर थी, तो कई लोगों ने सीपीआर

0: आर को एक्सेप्ट किया और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में सीपीआर स्टेशन होता है
1: जी जी
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: और अगर हमारे देश में अगर देख पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को सीपीआर आनी चाहिए, तो वो एक अच्छा मकसद है। एक जमाने में, मैं 2000 की बात कर रही हूं, कि कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था, सीपीआर क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था, लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि सीपीआर करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है बट एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला डॉक्टर हम सीपीआर मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था, तो मैंने बोला देखो अगर आप सीपीआर नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप सीपीआर कर रहे हो और समझो 1 2 3 1 में आपने देखा, पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप सीपीआर करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है, वहां पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा, आपका पेशेंट चला जाएगा, एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीजें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से, तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही, देश के हर कोने में सीपीआर दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे कि वो कैसे सीपीआर सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है, तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहां पे डॉक्टरों को सीपीआर आता ही आता है, वहां पे जाके बैच बना के कर सकते हैं, या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फोन करके अगर सीपीआर सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूंगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे, तो वो ऐसा गाना

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता। और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 2026 और यहां से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीजों पर आप ज्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली, तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है। सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया। सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर, सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस। और आप देखेंगे आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमोसोनोग्राफी सुबह में, तीन पेशेंट थे जिसमें दो को सीए था, तो वो जो लेडीज थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी।
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इश्यू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में। तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे की वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा। पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास। ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है, आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।

0: अपनी खुद का मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है। हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है। तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनकी रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूंगी, अरे मैं उस जगह जाऊंगी, उसकी बात करूंगी। कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था। तो मुझे बोलती नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी, तब मैं बायोप्सी करूंगी, तब मैं ये करूंगी। मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली। तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं,
1: प्रायोरिटी नहीं थी,
0: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने। वो सिर्फ बोली थी अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गांव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जांच कर लिया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं। अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं और उस पर कटौती भी करते हैं। क्योंकि एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आई एम हॉस्पिटल, जहां पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइमली, उसका फॉलो अप उसके। तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की वो रेगुलर चेकअप पे कर। 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है। अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल, या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली। ये बेहद खतरनाक है,
0: ये बहुत खतरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी। तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था, लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑल द मोर 6-7 महीने किए, और जब आई तो काफी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है, वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन, आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इंपल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी खत्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज उसकी यूज करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज्यादा है, एज अ जोकिंगली, बट ये ट्रूथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको, आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने दवाई

0: ली, खा भी लिए, तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाजम ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं लिखी है, तो उसके साइड इफेक्ट हुए
1: जी।
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ, सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे ही घर की नहीं है, हर घर की है, क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि उसमें पैसा गया हुआ है, उसे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयां फेल है, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम कर रही, क्योंकि आउट ऑफ द काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई है।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता, और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाजा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पोर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है, जब वो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में घुसती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना।
0: ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही गाना

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा,
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज्यादा न्यूज भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल, तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीजें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में

0: कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेचुरल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP
1: क्या
0: पार्लियामेंट
1: बात
0: के
1: है।
0: हैं सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए
1: जी
0: टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, जिसकी वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनकी ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज करें, न कि कियोज में यूज करें।
1: क्या
0: और
1: बात
0: पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टरों को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल है,
1: जी
0: और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है
1: जी
0: कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर, बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं। वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
1: जी
0: शी हर सेल्फ की, हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए। तो
1: जी
0: ये बहुत बड़ा चीज है और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज करिए और सी टू इट के वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए। शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मित्र प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते

0: होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता, सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते

0: कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

प्यार दर्द का दूसरा नाम है। उस दर्द का एहसास भी भला लगता है। प्यार के लम्हे बड़े छोटे होते हैं। उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है। उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख के कोपले हरी हो उठती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झरती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटखेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रही और कानाफूसी करती रही पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब। मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। ये ख्वाब सिर्फ इंतजार होते हैं।

यादें हमारी जिंदगी का आईना होती हैं। उसमें नजर आते हैं बीते समय, यादों का एक सिरा पकड़ते हैं कि बस चलचित्र की तरह जमाने भर की बातें हमारी आंखों के सामने ठहर जाती हैं। कई बार यादों का दामन थाम हम घंटों बैठे रहते हैं, खुद से गुफ्तगू करते भूल जाते हैं खुद को। वक्त का कौन सा सिरा आज है यही नहीं याद रहता, गुजरा जमाना है या है हकीकत। कुछ यादें हमें इतनी अजीज होती हैं कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सुना सुना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं ऐसे विषय जो जीवन को नई दिशा देने का काम करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त होस्ट मिनी मालवी, और आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय के साथ। दोस्तों, आज का दौर भागदौड़ भरी जिंदगी का दौर है। हर व्यक्ति जल्दी में है, हर किसी के पास समय कम है, और इसी जल्दबाजी में सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारी खान पान की आदतों पर। पहले जहां लोग घर का ताजा और पौष्टिक भोजन खाते थे, वहीं आज फास्ट फूड और जंक फूड ने हमारी थाली में अपनी जगह बना ली है। छोटे बच्चे हो, युवा हो या बड़े, हर किसी की पसंद अब पिज्जा, बर्गर, फिर फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स बनती जा रही है। खाने में स्वादिष्ट लगने वाली ये चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से कमजोर कर रही है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जंक फूड से दूरी स्वास्थ्य के लिए क्यों जरूरी है। दोस्तों, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तभी जीवन खुशहाल होगा, सपने पूरे होंगे और चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। इसलिए अगले कुछ समय तक हमारे साथ बने रहिए और सुनिए स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें। साथियों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जंक फूड आखिर होता क्या है। जंक फूड वह भोजन होता है जिसमें पोषण बहुत कम और तेल, नमक, चीनी तथा कृत्रिम पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं। यह भोजन शरीर को जरूरी ताकत देने के बजाय केवल स्वाद देता है। शुरुआत में हमें यह अच्छा लगता है क्योंकि दूसरा स्वाद हमारी जीभ को पसंद आता है, लेकिन धीरे धीरे यही भोजन शरीर में बीमारियों का कारण बनने लगता है। आज बाजार में रंग बिरंगे पैकेट और आकर्षक विज्ञापन देखकर बच्चे और युवा आसानी से इन चीजों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। टेलीविजन और मोबाइल पर दिखाई जाने वाली चमकदार दुनिया हमें यह महसूस कराती है कि यही आधुनिक जीवन शैली है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही आदतें आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, आजकल कई बच्चे सुबह का पौष्टिक नाश्ता छोड़कर चाइनीज और कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं। स्कूल से लौटते ही बाहर का खाना खाने की जिद करते हैं। कई युवा देर रात तक जागते हैं, मोबाइल चलाते हैं और साथ में जंक फूड खाते रहते हैं, और यह शरीर में पोषण की कमी होने लगती है। इससे शरीर जल्दी ही थकने लगता है। डॉक्टर का कहना है कि लगातार जंक फूड खाने से मोटापा तेजी से बढ़ता है। मोटापा केवल शरीर का वजन बढ़ना नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों का दरवाजा है। इसके कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कमजोरी जैसी समस्याएं कम उम्र में ही दिखाई देती है। श्रोताओं, हमारा शरीर प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है। यदि हम इसे सही भोजन देंगे तो यह हमें ऊर्जा, खुशी और लंबी उम्र देगी, लेकिन यदि हम केवल स्वाद के पीछे भागेंगे तो शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाएगा। आज कई लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है इसलिए वे बाहर का खाना खाते हैं, लेकिन क्या कुछ मिनट बचाने के लिए अपना स्वास्थ्य खो देना सही है? हमें ये समझना होगा कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा, सफलता और आराम तभी अच्छे लगते हैं जब शरीर स्वस्थ हो। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने भोजन में पौष्टिक चीजों को शामिल करें। ताजे फल, हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, सलाद और घर का बना भोजन शरीर को ताकत देता है। सुबह का नाश्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दिन भर पर्याप्त पानी पीना चाहिए और कोल्ड ड्रिंक से दूर रहना चाहिए। साथ ही रोज थोड़ा व्यायाम या योग भी जरूरी है। यदि हम छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं तो बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। साथियों, परिवार का वातावरण भी बच्चों की आदतों को प्रभावित करता है। यदि माता पिता खुद जंक फूड ज्यादा खाएंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। इसलिए जरूरी है कि घर में पौष्टिक भोजन को महत्व दिया जाए। बच्चों को प्यार से समझाया जाए कि घर का खाना ही असली ताकत देता है। कई बार माता पिता बच्चों की खुशी के लिए हर बार बाहर का खाना खिला देते हैं, लेकिन असली खुशी तो स्वस्थ जीवन में छुपी होती है। पुराने समय में लोग सादा भोजन खाते थे, खेतों में मेहनत करते थे, तब समय पर सोते थे और प्राकृतिक चीजों का सेवन करते थे। यही कारण था कि वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। आज सुविधाएं बढ़ गई है लेकिन बीमारियां भी तेजी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बदलती जीवन शैली
और गलत खान पान है, इसलिए हमें आधुनिकता के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। प्रिय युवाओं, आप देश का भविष्य हैं, आपकी ऊर्जा और आपकी ताकत ही आने वाले भारत की पहचान बनेगी, इसलिए अभी से अपनी आदतों को सुधारना बहुत जरूरी है। याद रखिए, शरीर एक बार खराब हो जाए तो उसे ठीक करने में बहुत समय और मेहनत लगती है, इसलिए समय रहते ही सही रास्ता चुनना ही समझदारी है। जंक फूड कभी कभी खाना गलत नहीं है, लेकिन इसे रोजमर्रा की आदत बना लेना नुकसानदायक है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बस इतना कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य कुछ मिनटों का होता है, लेकिन स्वास्थ्य पूरी जिंदगी का साथ देता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हर सपना पूरा कर पाएंगे, इसलिए आइए आज हम सभी मिलकर एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, पौष्टिक भोजन अपनाएंगे और जंक फूड से दूरी बनाएंगे, क्योंकि सच कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य से जुड़ी इन अनमोल बातों के बाद अब वक्त हो गया है आपके मन को संगीत की मधुर धुनों से सजाने का। तैयार हो जाइए एक शानदार संगीत प्रस्तुति के लिए, जो आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में ताजगी भर देगी। आइए सुनते हैं ये संगीत।

0: स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। उम्मीद है आपको संगीत की इस खूबसूरत प्रस्तुति का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, जीवन को बेहतर बनाने के लिए केवल स्वस्थ शरीर ही नहीं बल्कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी बेहद जरूरी है। जिस तरह जंक फूड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसी तरह प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को धीरे धीरे बीमार बना रहा है। आज हर सड़क, हर बाजार, हर नदी और यहाँ तक के खेतों में भी प्लास्टिक का कचरा दिखाई देता है। खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी यह प्लास्टिक जिसे केवल एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है, आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसलिए आज के इस खंड में हम बात करेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम कैसे करें। दोस्तों, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित और स्वच्छ बनाएं। साथियों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक आखिर होता क्या है। सिंगल यूज प्लास्टिक वह प्लास्टिक होता है जिसे हम केवल एक बार उपयोग करते हैं और फिर फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक की थैलियां, डिस्पोजल कप, पानी की बोतल, स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट और छोटे छोटे पैकेट। देखने में ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। प्लास्टिक मिट्टी में आसानी से नहीं गलता, इसे खत्म होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक का कचरा लगातार बढ़ता जा रहा है और धरती को प्रदूषित कर रहा है। आज नदियों में प्लास्टिक बह रहा है, जानवर गलती से इसे खा लेते हैं और कई बार उनकी जान तक चली जाती है। समुद्र में रहने वाले जीव भी प्लास्टिक से ही प्रभावित हो रहे हैं। जब प्लास्टिक जलाया जाता है तो उससे निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना देता है। साथियों, यही प्रदूषण धीरे धीरे हमारे शरीर में पहुंचकर कई बीमारियों का कारण बनता है। यानी प्लास्टिक केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है। श्रोताओं, सबसे दुख की बात यह है कि हम में से कई लोग सुविधा के कारण बिना सोचे समझे प्लास्टिक का उपयोग करते रहते हैं। बाजार जाते समय कपड़ों का थैला ले जाने के बजाय हम हर बार नई प्लास्टिक थैली ले लेते हैं। पानी पीने के लिए बार बार प्लास्टिक बॉटल खरीदते हैं। छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे एक बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि हम चाहें तो बहुत आसान तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है कपड़े या जूट के बैग का इस्तेमाल करना। जब भी बाहर जाएं, अपने साथ कपड़े का थैला लेकर जरूर जाएं। इससे प्लास्टिक की थैलियों की जरूरत कम होगी। इसी तरह घर में स्टील, कांच या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बढ़ना चाहिए। आजकल कई लोग पानी के लिए स्टील या कॉपर की बॉटलें इस्तेमाल करने लगे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छी और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि छोटी छोटी सावधानियां भी बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि हम चाय पीने के लिए प्लास्टिक की कप की जगह कुल्हड़ या स्टील के कप का इस्तेमाल करें तो इससे भी प्लास्टिक कम होगा। शादी पार्टी और अन्य कार्यक्रमों में डिस्पोजल प्लेटों के बजाय स्टील या पत्तल का उपयोग किया जा सकता है। धीरे धीरे जब लोग जागरूक होंगे तब समाज में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। दोस्तों, स्कूल और कॉलेजों में भी बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना बहुत जरूरी है। यदि बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाए कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए तो आने वाली पीढ़ियां ज्यादा जिम्मेदार बनेगी। कई स्कूलों में अब नो प्लास्टिक अभियान चलाया जा रहा है, जहां बच्चों को कपड़ों के बैग और पानी की बॉटल साथ लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। श्रोताओं, आज पूरी दुनिया पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने भी कई जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन केवल नियम बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी। असली बदलाव तब आएगा जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा। जब हम खुद प्लास्टिक लेने से मना करेंगे तो दुकानदार भी विकल्प ढूंढेंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा रहे, नदियां स्वच्छ रहे और हवा शुद्ध रहे, लेकिन इसके लिए हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। याद रखिए, धरती केवल हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। यदि आज हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो भविष्य में इसका असर हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। प्रिय श्रोताओं, पर्यावरण की रक्षा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जब हम प्लास्टिक की जगह कपड़ों का बैग चुनते हैं, जब हम डिस्पोजल जैसी चीजों से दूरी बनाते हैं, दूसरों को जागरूक करते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण से जुड़ी इन महत्वपूर्ण बातों के बाद अब समय हो गया इनसे मिले की और जाने का, जहां हम सुनेंगे मधु मालवीय और डॉक्टर प्रमोद मालवीय की बातचीत, जिसमें प्रमुख विषय है नशा मुक्ति दिवस पर लाभ और हानि।
1: पानी की मन से मिली क्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ मधु मालवीय। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी, जो बैतूल के जाने माने चिकित्सकों में से एक है और वर्तमान में जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनके पास एमडी मेडिसिन, डीएमएच, सीएच मदर चाइल्ड, डीएमएच मानसिक रोग और नशा मुक्ति जैसी डिग्रियां हैं, साथ ही यह मेडिकल स्पेशलिस्ट भी है। श्रोताओं, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर का अनुभव और समाज के प्रति इनकी जागरूकता लोगों के लिए प्रेरणादायक रही है। डॉक्टर लंबे समय से मरीजों की सेवा के साथ साथ युवाओं और समाज को स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करने का कार्य भी कर रहे हैं। श्रोताओं, हर वर्ष 30 मई को नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर हम डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी से जानेंगे कि नशा किस प्रकार युवाओं के जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करता है तथा इससे बचने और बाहर निकलने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार। श्रोताओं, बढ़ती हुई बेरोजगारी, सामाजिक दबाव, कुसंगति के कारण आजकल देखा जा रहा है कि नशे की बहुलता सभी जगह पर बहुत हो रही है और विशेषकर ऐसा वर्ग जो जिसके ऊपर पूरे देश की डारोम डार है या जो देश को सबसे ज्यादा कमाऊ वर्ग है यानी युवा वर्ग,

0: संगति के कारण आजकल देखा जा रहा है कि नशे की बहुलता सभी जगह पर बहुत हो रही है, और विशेषकर ऐसा वर्ग जो जिसके ऊपर पूरे देश की दारोमदार है, या जो देश को सबसे ज्यादा कमाऊ वर्ग है यानी युवा वर्ग, वही नशे की पकड़ में सबसे ज्यादा आ रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे युवा श्रोताओं को बताइए कि नशा वस्तु में क्या होता है।
0: किसी ऐसी ड्रग या जैसे शराब, अफीम या तंबाकू का सेवन करना जिससे कि आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, जिससे कि आपका आर्थिक और सामाजिक व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, जिससे कि आप अपने आप को, आपका शरीर निरंतर खराब होते जा रहा है, वो सब चीजें नशे के अंतर्गत आती है।
1: डॉक्टर, आजकल युवाओं में नशे की लत तेजी से क्यों बढ़ रही है? अपने रीजन में कौन कौन से नशे युवाओं में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं?
0: भोपाल टेरिटरी
1: जी
0: पूरे दुनिया में सबसे फेमस है एक चीज के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तंबाकू और तंबाकू जनित बीमारियों के लिए भोपाल का ये एरिया सबसे टॉप पर है। तो भोपाल के अंतर्गत ही बैतूल आता है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का नशा किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में शराब का नशा भी बहुत कॉमन है। शराब के नशे के लिए हमेशा छोड़ने के लिए हमेशा डॉक्टरी सलाह की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये नशा इतने आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा कारण ये है कि शराब के नशे से पूरा शरीर इसकी आदि होता है। यदि शराब छोड़ते हैं तो कभी बीपी कम होता है, तो कभी बहुत ज्यादा उल्टी चालू हो जाती है, तो कभी नाड़ी गोल होने लगती है, तो कभी पेट में दर्द होने लगता है। तो बिना डॉक्टरी दवाई के या बिना डॉक्टरी देख रेख के शराब का नशा नहीं छुड़वाया जा सकता, लेकिन तंबाकू का नशा छुड़वाने के लिए बहुत विशेष डॉक्टरी देख रेख की जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर की ओपीडी में आना या खुद ही कोशिश करना इसके लिए पर्याप्त होता है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि शराब को बिना सलाह के नहीं छुड़ाया जा सकता, तंबाकू को छुड़ाया जा सकता है, तो तंबाकू से व्यक्ति के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं?
0: 4000 प्रकार के जहर होते हैं जिसे हम केमिकल बोलते हैं। क्या आप बैटरी का चूरा खाना चाहेंगे? क्या आप गटर की गैस को मुंह में लेना चाहेंगे? क्या आप एसिड की बूंद को जीभ पर रखना चाहेंगे? क्या आप खेत में डालने वाले कीटनाशक को आप सूंघना चाहेंगे? क्या आप टॉयलेट साफ करने वाले पदार्थ को पेट में डालना चाहेंगे? नहीं, लेकिन ये सब चीजें तंबाकू में होती है, और यदि आप तंबाकू खाते हैं तो ये सब चीजें आपके अंदर जाते हैं।
1: जैसे कि आपने बताया कि तंबाकू में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, सर इसमें तंबाकू में जैसे कि हम जानते हैं कि सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू से कैंसर होता है, तो सर इसके अलावा इससे और क्या क्या हो सकते हैं जो व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करे?
0: सबसे मेन चीज होती है कि आपको दिल की बीमारी हो सकती है
1: जी।
0: उसके बाद आपको पेट में अल्सर हो सकता है, आप समय से पहले बूढ़ी हो सकते हैं, आप अंधे हो सकते हैं, आप बहरे हो सकते हैं, आपके फेफड़े बुरी तरह से खराब हो सकते हैं, बिना कारण के आपको दमा हो सकता है। इसके अलावा मुंह का कैंसर, छाती का कैंसर या गर्म मुख का कैंसर तो होता ही है। जैसे कि
1: प्रमोद मालवीय जी, आप हमारे युवा श्रोताओं को बताइए कि व्यक्ति तंबाकू क्यों नहीं छोड़ना चाहता है, और उसको तंबाकू छोड़ने के लिए किस प्रकार से मनाया जा सकता है?
0: तंबाकू छोड़ने के दो तीन कारण होते हैं, एक तो फिजिकल यानी शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है, और एक आदत वाला कारण होता है। शरीर तंबाकू खाने से कई लोगों को टेंशन खत्म हो जाता है, या शरीर तंबाकू की तलब मांगता है, तो ये शारीरिक कारण हुआ।

0: इसके कुछ कुछ आदि हो जाते हैं, हमारा इमोशनली चेंज होते हैं, हमें कोई टेंशन होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो पूरा हाथ हमारा तम्बाकू या बीड़ी सिगरेट की तरफ जाता है। ये मानसिक कारण हुआ। और आदत, सुबह के समय हमें टॉयलेट जाना है, बिना तम्बाकू के टॉयलेट नहीं हो रही है, या बिना तम्बाकू के अच्छा नहीं लग रहा है, ये आदत वाली बात हो जाती है। तो ये मेन तीन कारण होते हैं जिसके कारण आदमी तम्बाकू नहीं छोड़ना चाहता है। उसे ये भी डर लगता है कि तम्बाकू छोड़ पाओगा कि नहीं छोड़ पाओगा, इसलिए छोड़ना चालू ही मत करो।
1: डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी, आप हमारे युवा श्रोताओं को बताइए कि शराब को छुड़ाने के लिए डॉक्टर किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं?
0: तम्बाकू को।
1: डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी, आप हमारे युवा श्रोताओं को बताइए कि तम्बाकू को छुड़ाने के लिए डॉक्टर किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं?
0: मोटिवेट करना यानी किसी को तम्बाकू छोड़ने के लिए मनाना
1: जी।
0: देखो, तम्बाकू से हार्ट अटैक भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है
1: जी।
0: और मैंने बहुत सी बीमारी जो बताई है वो सब हो सकती है। तो पहले तो हमें उसको थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा कि तुम तम्बाकू लेते रहोगे तो ये हो सकता है। दूसरा ये है कि तुरंत में वो बोलेगा कि अभी तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि कोई तम्बाकू ले रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, तो उसको खांसी की, दमे की या सीओपीडी की बीमारी आ गई होती है। तो उसको ये बताना जरूरी होता है कि तुम बोल रहे हो कि ये बाद में आएगी, लेकिन ये चीज तो आ चुकी है, थोड़े से चलने पे आप जाते हो, दम बढ़ने लगता है, ये तो अभी आने लगा है। तीसरा ये है कि तम्बाकू छोड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? वही फायदा होगा कि आपको ये बीमारी, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, तो बीपी की बीमारी नहीं होगी, तो कैंसर नहीं होगा। लेकिन एक और फायदा होगा, तम्बाकू खाने से मुंह के टेस्ट बट और नाक की सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। आप तम्बाकू छोड़ेंगे तो आपको खाने में स्वाद आने लगेगा और आपको हर चीज सूंघने में अच्छी महसूस होने लगेगी। उसके बाद में ये भी हमें बताना पड़ेगा कि दिक्कतें आ सकती है, तलब आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, लेकिन इससे पार आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे ही जीत है।

0: डाल देना चाहिए तंबाकू खाने या बीड़ी सिगरेट पीने के लिए अपने आप को, कि ये सोचना चाहिए कि नहीं मैं अभी नहीं लूंगा, लगभग ये घड़ी में 5 मिनट हो जाएगी, इसी के बाद मैं बीड़ी सिगरेट लूंगा या तंबाकू खाऊंगा। दूसरा ये है कि अपने आप का दिमाग तंबाकू और सिगरेट से हटा के कहीं और लगा लेना चाहिए, जैसे कि आप कुछ अच्छी चीज सोचने लगो, किसी पिक्चर के बारे में सोचने लगो, या किसी परिवार के अच्छी चीजों के बारे में सोचने लगो, या ये सोचने लगो कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे ना कैंसर होगा, ना बीपी होगा, ना शुगर होगी। इसके बाद तीसरी चीज आती है कि खूब सारा पानी पियो, ढेर सारा पानी पीने लगो, तो इससे आपका दिमाग भट जाएगा। चौथी चीज आती है कि गहरी गहरी सांस लेने लगो, गहरी गहरी सांस लो और उसको गिनना चालू करो, ठीक 1 2 3 4 जब तक के दिमाग से तंबाकू का नाम न हट जाए, और उसके बाद में यदि उसके बावजूद भी अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर निकल जाओ और अपने किसी अच्छे चाहने वाले से बात करो, उससे बताओ कि मैं तंबाकू छोड़ना चाह रहा हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट छोड़ना चाह रहा हूँ और आपकी क्या सलाह इस बारे में। तो ये काम अपन कर सकते हैं, ऐसे दोस्तों से बचे जो कि आपको, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं या आपको बीड़ी सिगरेट पीने के लिए सलाह देते हैं, उन सबसे बचे।
1: डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी, आप हमारे युवा श्रोताओं को बताएंगे कि क्या तंबाकू छोड़ने के लिए भी दवाइयां आती है?
0: हाँ, निकोटीन के पेचेस आते हैं जो डॉक्टर की सलाह पर 24 घंटे में एक बार लगाना पड़ता है। वर्नेसेलिन जैसी गोलियां आती है, ब्यूप्रोफियन जैसी गोलियां आती है, जो कि बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए। एक बार यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो डॉक्टर से मिले।
1: जैसे तंबाकू के लिए आपने अभी गोलियां बताई, तो क्या शराब छोड़ने के लिए भी दवाइयां आती है?
0: हाँ, शराब छोड़ने के लिए भी बहुत ताकतवर, बहुत अच्छी और सफल दवाइयां आती है, लेकिन उसके लिए भी डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी होता है। बिना डॉक्टर के ना ही तंबाकू छोड़ने की दवा दी जाती है, ना ही शराब छोड़ने की दवा दी जाती है। और कुछ दवाइयां जो आपने पढ़ा होगा कि इसको मिलाकर चाय में देने से, खाने में देने से शराब छूट जाती है, वो दवाई का उपयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो दवाइयां बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और आपको लिए वो जानलेवा भी हो सकती है। पढ़कर किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें।
1: जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बिना डॉक्टरी सलाह के आपको किसी प्रकार की कोई भी दवाइयां नहीं लेनी है, डॉक्टरी सलाह के बाद ही आपको दवाइयां लेनी है। डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी, आप हमारे युवा श्रोताओं को बताइए कि जो युवा तनाव, पढ़ाई या सफलता के कारण नशे की ओर जाते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: असफलता का एक मार्ग है, और मैं भी कई बार असफल हुआ है
1: जी।
0: लेकिन यदि मैं बीच में नशा, ड्रग्स, शराब में चला जाता तो आज क्या इस जगह पर पहुंच पाता? बिल्कुल नहीं। इसलिए कभी भी इस आदत को मत अपनाइए, बार बार प्रयास करिए, आप जरूर सफल हो।
1: श्रोताओ, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि नई समस्याओं की शुरुआत है। स्वस्थ जीवन अपनाइए, सकारात्मक सोच रखिए और अपने परिवार और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग दीजिए। अंत में डॉक्टर प्रमोद मालवीय जी से पूछते हैं कि उन्हें किस कौन सा गाना पसंद है, उनकी पसंद का गाना आज हम सुनवाएंगे।
0: एक
2: दोस्तों, अब समय हो चुका है कार्यक्रम की समाप्ति का। अब दीजिए इजाजत आपकी दोस्त मिनी मालवी को। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जय हिंद, सुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। संध्या के 6 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए जान लेते हैं आज और कल की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे गोधूली कार्यक्रम। कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 6:30 पर। 6:50 से प्रस्तुति होगी सबरस कार्यक्रम की। प्रादेशिक समाचार सुनेंगे 7:10 पर। 7:20 से वक्त होगा कार्यक्रम ग्राम सभा का। कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ सुनेंगे रात्रि 8:00। कार्यक्रम साहित्य सरिता की प्रस्तुति होगी 8:30 पर। 8:45 से सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 से होंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। रात्रि 10:00 सुनेंगे कार्यक्रम मेरी पसंद। कार्यक्रम सुगम संगीत की प्रस्तुति होगी 10:30 से। रात्रि 11:00 होंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे 11:05 पर। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं। कल की प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी सुबह 6:00 6:05 पर भक्तिधारा कार्यक्रम के साथ। 6:30 से होगा चिंतन कार्यक्रम। श्री रामचरितमानस गान की प्रस्तुति होगी 6:35 पर। 6:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंजनी। हिंदी में समाचारों का वक्त होगा सुबह 7:00। सात बजकर 10 पर रिले किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। यादों के झरोखे से कार्यक्रम सुनेंगे 7:20 पर। 7:50 पर वक्त होगा सुबह सवेरे कार्यक्रम का। 8:00 से सुनेंगे समाचार प्रभात। मॉर्निंग न्यूज जानेंगे 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम वतन का राग सुनेंगे 8:30 से। सुबह 9:00 से रात्रि 10:00 तक होंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। इसी बीच जिले की चिट्ठी कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 10:00। 10:05 पर लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। महिला जगत कार्यक्रम सुनेंगे 10:35 से। इसमें आज की बात का विषय होगा डिजिटल साक्षरता और महिलाएं। 2:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। हिंदी में समाचार सुनेंगे 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। युववाणी कार्यक्रम का वक्त होगा संध्या 5:30 पर। कल कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा आर्थिक जोखिम से बचाव के लिए बीमा जरूरी है। माटी के इस कार्यक्रम सुनेंगे 6:05 से। वक्त होगा फिल्म संगीत कार्यक्रम का। सबरस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी 6:50 पर। 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का वक्त होगा 7:20 पर। कार्यक्रम गाने नए पुराने सुनेंगे रात्रि 8:00 से। 8:30 पर प्रस्तुति होगी रेडियो के हम सफर कार्यक्रम की। समाचार संध्या सुनेंगे 8:45 पर। रात्रि 10:00 होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनेंगे 10:30 पर। रात्रि 11:00 होंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे 11:05 पर। ये थे आज और कल की सभा के शेष कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। संध्या के 6:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गोधूली।

गोधूली कार्यक्रम जारी है आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से। कार्यक्रम में आवाज है सुमन कल्याणपुर की।

सुमन कल्याणपुर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही गोधूली कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। संध्या के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत है अलीशा चुनाई और आतिफ असलम की आवाजों में। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी।

आतिफ असलम के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। संध्या के 6:50 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का पहला गीत है एलिशा चनाई की आवाज में

कार्यक्रम का ये गैर फिल्मी गीत आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में। कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे अभिजीत की आवाज में। कार्यक्रम है सबरस।

0: जगजीत सिंह और आशफ जी की आवाज में ये गीत आप सुनिए सबरस कार्यक्रम में।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

जगजीत सिंह और आशा जी की के गाए इस गीत के साथ ही सबरस कार्यक्रम आप संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। संध्या की 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने और हाइड्रेटेड रहने की अपील की। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस योजना को जारी रखने की मंजूरी दी, जिसके लिए 25,530 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। खजुराहो में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। देश भर में बढ़ती गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को हाइड्रेटेड रखने और दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचने और घर से निकलते वक्त पानी साथ रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो प्यासा हो उसे पानी पिलाएं और जानवरों और पक्षियों के लिए भी बाहर पानी रखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। समारोह में 33 विभागों के करीब 14,000 छात्रों को उपाधियां प्रदान की गयी। 285 मेधावी छात्रों को स्वर्ण और रजत पदक से नवाजा गया, जिसमें 199 छात्राएं शामिल रहीं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में सार्थक पीडीएस योजना को अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पीडीएस संचालन को आधुनिक बनाया जाएगा। सार्थक पीडीएस योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन को बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मौल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। एक्ट्रेस तुषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में भोपाल कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ सिंह को 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। सीबीआई की टीम उसे लेकर घटनास्थल का निरीक्षण भी करने गई। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिटायर्ड जज और सास गिरबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की नई भाषा नीति पर रोक को लेकर कोई भी दिशा निर्देश देने से इनकार कर दिया है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में सीबीएसई को जवाब देने के लिए नोटिस दिया है। सीबीएसई की नई नीति के मुताबिक कक्षा 9-10 के लिए स्टूडेंट्स को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें 2 भाषाओं का नेटिव इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है। इसी नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15-16 जुलाई की तारीख दी है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। खजुराहो के पश्चिमी मंदिर परिसर में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय काउंटडाउन सीरीज के 25वें कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में करीब 2,000 लोगों ने भाग लिया। श्री जाधव ने घोषणा की कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस बार की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। इस मौके पर श्री जाधव ने कहा कि
3: आज खजुराहो और

0: स्थापित कर रहे हैं। आधुनिक युग में योग हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग बनकर उभरा है। योग एक प्रगतिशील और स्वस्थ समाज की आधारशिला है।
1: उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने आज मंत्रालय में एयर एम्बुलेंस एंट्री पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इसमें एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए अनुरोध की प्रक्रिया अब और सरल व तेज हो जाएगी। पोर्टल में रियल टाइम ट्रैकिंग, डिजिटल सेवा अनुरोध और समयबद्ध अनुमोदन अलर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे के दो कोचिंग संस्थानों के शिक्षक शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर भोपाल में आज कांग्रेसजनों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रोशनपुरा चौराहे पर स्थापित पंडित नेहरू की प्रतिमा पर पुष्पार्चन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी एप्लीकेशन या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य

13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड काल को छोड़कर विगत 10 वर्षों में यह सर्वाधिक गेहूं उपार्जन है। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक 39,975 उपभोक्ता पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311,64,00,000 रूपये से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी का दौर जारी। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कल प्रदेश के 16 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। इसमें खजुराहो सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई तक गर्मी अपने चरम पर बनी रहेगी, लेकिन 29 मई से मौसम बदलना शुरू होगा और कई जिलों में आंधी व बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। विभाग का कहना है कि 10 से 16 जून के बीच मानसून प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं भोपाल स्थित अनुसंधान संस्थान 3 से 5 जून तक भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों के 60 प्राध्यापक भाग लेंगे। खरगोन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठिपगांव शाखा में 41,00,000 रुपए के गबन का मामला सामने आने पर बैंक प्रबंधन ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी जिले में बाल श्रम रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों, कारखानों में बाल श्रमिक न होने की जांच करने और होने पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। पेयजल समस्याओं की सतत निगरानी और हैंडपंप संधारण संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए आगरमालवा में जिला स्तरीय नियंत्रण कंट्रोल रूम बनाया गया है। कटनी में IHSDP योजना के तहत प्रेमनगर बस्ती में बने आवासों पर 8 अनाधिकृत कब्जों को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। राजगढ़ में आज जिला पंचायत सभा कक्ष में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। शहडोल जिले में खरीफ फसल की बोनी का लक्ष्य 3,000 हेक्टेयर बढ़ाकर धान की बोली का लक्ष्य 1,50,000 हेक्टेयर किया गया है। खंडवा जिला चिकित्सालय सह चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने आज CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। और IPL में अब से कुछ देर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। जो टीम जीतेगी वह शुक्रवार को गुजरात टाइटन से भिड़ेगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 7:20 हो चुके हैं और प्रस्तुत है किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा। और ग्राम सभा में हम बात करेंगे बहुत सी

कार्यक्रम ग्राम सभा सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को, सभी ग्रामीण भाइयों और बहनों को तरुण मालवी का राम राम। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की हमारी छोटी सी अपनी बात से, जिसका विषय हमने लिया है अपने गांव को साफ रखे। तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई हमें बहुत ही पसंद है, लेकिन इसकी शुरुआत के लिए कई बार हम संकोच करने लग जाते हैं। हम चाहते हैं कि कोई और कर ले, लेकिन किसी भी कार्य की शुरुआत जो है सबके करने से ही होती है, यानी सब लोगों को मिलजुल कर ही करना होगा। और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो वातावरण है वो सकारात्मक हो जाता है, मनमोहक हो जाता है। उसके अलावा जो है साफ सुथरा भी दिखने लग जाता है। इसके अलावा अगर हम फायदे की बात करें तो देखिए, अगर साफ सुथरा वातावरण होगा तो वहां मच्छर मक्खी कम होंगे, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा भी कम हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे हमारे जो वृद्ध हैं वो सुबह घूमने जाते हैं, शाम को घूमने जाते हैं, तो उनको भी ताजी हवा मिलती रहेगी। शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमने अपने आसपास के वातावरण को साफ करना होगा, और एक छोटे से समूह के रूप में अगर हम निर्माण कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, भले हम माह में एक बार यानी मंथ में एक बार या महीने में एक बार साफ सफाई के लिए सारे एकजुट होकर साफ सफाई के कार्य को अंजाम दे, जिससे ये होगा कि देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे और धीरे धीरे करके ये जो मुहिम है वो बढ़कर काफी बड़ी हो जाएगी, जिससे हमारे जो मोहल्ले से लेकर के हम गांव तक और गांव से लेकर के हम अपने शहर तक के इस मुहिम को पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से जब हम किसी कार्य में योगदान देंगे तो जो हमारे सहभागी होंगे, हमारे दोस्त होंगे, हमारे यार होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, और हमें देखकर अगले जो भी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी प्रेरित होंगी। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो युवा साथी हैं जो चाहते हैं इस कार्य को करना, लेकिन कहीं ना कहीं संकोच भरे मन की वजह से जो है ये कार्य नहीं कर पाते हैं, तो वो भी इस कार्य में जुड़ेंगे और समूह में मिलकर हम एक दिन सफाई कर सकते हैं।

कॉलोनी में उन्होंने जो है छोटे छोटे पौधे लगाए, उनको पानी डाला। पानी डालने के बाद आज वो एक ऐसी स्ट्रीट के रूप में विख्यात हो चुकी है जहां पर लोग बाहर से भी घूमने आते हैं, क्योंकि वहां पर काफी अच्छी खुशबू आती है, वहां का वातावरण काफी अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ अभी ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ठंडक भी काफी अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा हमारे एक और परिचित है, उन्होंने जो एक छोटी सी मुहिम लगाई थी जिसमें उन्होंने नीम के जो पौधे होते हैं वो जगह जगह पर लगाए, और जब भी उन्हें समय मिलता था वो जाकर उनमें पानी डालते थे। आज वो वृक्ष काफी बड़े हो चुके हैं और उनको देखकर उन्हें खुद ही बहुत अच्छा लगता है कि हमने अपने जो शहर है, शहर में कहीं ना कहीं हरा भरा वातावरण बनाने के लिए जो अपना खुद का योगदान दिया है, ये काबिले तारीफ है। तो हम भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं और निश्चित रूप से अपने गाँव के साथ साथ, अपने मोहल्ले के साथ साथ, अपने पूरे शहर को जो है अच्छी हवा दे सकते हैं, इसके अलावा जो है अच्छी खुशबूदार वातावरण दे सकते हैं, मनमोहक वातावरण दे सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है साफ सफाई हमारे लिए काफी फायदेमंद है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी हमने सुना ये मधुर लोक भजन पन्ना लाल गुजेले और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में अब समय है आज की सामयिक चर्चा का, और आज की हमारी सामयिक चर्चा का विषय है मुर्गियों को गर्मियों से बचाएं। तो हम सभी जानते हैं मुर्गी पालन फायदे का सौदा है और ये काफी अच्छा व्यवसाय है जो कृषि के साथ सह आय के स्रोत तैयार करता है, और सह आय के स्रोत के रूप में हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो बकरी पालन का व्यवसाय करते हैं, पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। इसके अलावा हमारे कई सारे ऐसे श्रोता भाई हैं, ऐसे किसान भाई हैं जो सब्जी पालन का भी, यानी सब्जियों को उगाते हैं, उसको बाजार में बेचते हैं, यानी सब्जी का भी व्यवसाय करते हैं। लेकिन मुर्गी पालन का एक ऐसा व्यवसाय है जो 12 महीना चलता रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ जो है थोड़ी सी सावधानियां रखनी होती है। सावधानियों की हम बात करें तो इसमें सबसे पहली सावधानी ये होती है कि इसमें समय पर टीका करना बहुत जरूरी होता है, और इसके अलावा दूसरी चीज इसमें एक ये देखने में आती है कि ग्रीष्म ऋतु में जो मुर्गियां होती है उन्हें हीट स्ट्रोक आने लग जाते हैं, यानी पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से जो है मुर्गियां मरने लग जाती हैं। इसके अलावा एक और सावधानी हमें रखनी होती है, जब वो ठंड के ऋतु की हम बात करें तो उस टाइम पर जो होता है इनमें हर्डलिंग होने लग जाती है, इन्हें ठंड की वजह से मुर्गियां पास आने लग जाती हैं, और पास आने की वजह से भी जो है नीचे दबी हुई मुर्गियां मरने लग जाती हैं। तो ये एक छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जिसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से मुर्गी पालन का व्यवसाय काफी अच्छा है, और निश्चित रूप से हम इससे एक अलग आय का जरिया तैयार कर सकते हैं। लेकिन अभी हम हाल फिलहाल बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की, और इस समय जो सबसे बड़ी समस्या देखने में आती है वो ये है कि ग्रीष्म ऋतु में मुर्गियां जो होती है वो हीट स्ट्रोक की वजह से मरने लग जाती है, क्योंकि वातावरण जो होता है इसमें नमी का प्रतिशत कम हो जाता है, और नमी की प्रतिशत की कमी की वजह से जो मुर्गियां हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा उनका शरीर जो है वो धीरे धीरे डिहाइड्रेट होने लग जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से हीट स्ट्रोक होता है। तो इसको हम कई रूप में भी संभाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जहां पर भी हम मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं उसकी छत, यानी वो भले सीमेंट की बनी हुई हो या फिर टीन की चादर की बनी हुई हो, उसको ठंडा रखना अनिवार्य होता है। ठंडा रखने के लिए हमारे कई सारे श्रोता भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं जो मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि उसके ऊपर घास की जो पलार होती है उसको बिछा देते हैं, और उसमें थोड़ी थोड़ी देर में, यानी दो दो तीन तीन घंटे के अंतराल में उसको गीला करके रखते हैं। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि आसपास का जो वातावरण है, जहां पर हमने जाली लगा कर रखी है वहां से भी गर्म हवा आती है, तो उस जगह पे हम जूट के बोरे लगा दें और जूट के बोरों को गीला कर दें। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास धान की पलार हो या फिर जो भी हमारे पास ऐसा घास फूस पड़ा हुआ हो उसके एक छोटे छोटे फट्टे बनाकर उसको लगा दें और उसको भी हम गीला करें। तो इससे यह होगा कि जो अंदर आने वाली हवा है उसमें गर्मी का प्रतिशत, यानी

का परसेंट होता है वो कुछ हद तक के कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर आने वाली हवा जो है वो ठंडी हो जाएगी और हीट स्ट्रोक लगने की संभावना भी कम हो जाएगी। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि अगर हमने वृहद स्तर पर, यानी कि अगर बड़े स्तर पर मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, तो हम वहां पर कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास जो है खस की टाट लगा सकते हैं, जिसकी वजह से भी जो है काफी हद तक हम लू को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जो गर्म हवाएं आ रही है उनको व्यवस्थित कर सकते हैं, जो हमारे मुर्गी पालन के व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकती है। अंदर का वातावरण हम अगर मेंटेन रखेंगे, उसको मुर्गियों के अनुरूप रखेंगे, तो निश्चित रूप से मुर्गियों के मरने की संभावना जो है वो नगण्य हो जाएगी और हमें हमारे व्यवसाय में किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होगा। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि समय समय पर एक एक घंटे के अंतराल से पानी की फुहार चलाते रहे, जिसकी वजह से भी अंदर जो है नमी का प्रतिशत बना रहेगा और जो है ठंडक निश्चित रूप से बनी रहेगी। पीने के पानी की व्यवस्था का खास ध्यान रखना चाहिए। अमूमन होता यह है कि चाहे हम पशुपालन का काम कर रहे हो, बकरी पालन का काम कर रहे हो या फिर मुर्गी पालन का काम कर रहे हो, इसमें हम ये करते हैं कि पानी की व्यवस्था जो है हम जो परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, यानी कि अगर हमने ठंड के समय में दिन में एक बार पानी पिलाया तो ग्रीष्म ऋतु में भी हम दिन में एक ही बार पिलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऋतुएं होती है उनके अनुसार हमें जो है चीजों को बदलना चाहिए और ग्रीष्म ऋतु पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कम से कम 3 से 4 बार मुर्गियों को पानी पिलाएं, या फिर पशुपालन का काम कर रहे हैं तो अपने पशुओं को पानी पिलाएं, बकरी पालन का काम कर रहे हैं तो अपनी बकरियां जो है उनको पानी समय समय पर देते रहें, जिससे इनका शरीर जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होगा और इनमें किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी हमने सुना ये मधुर देवी जस नानक राम बारस्कर और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में अब एक जरूरी सूचना। रेशम मंत्रालय की रेशम समृद्धि योजना अंतर्गत कृषक भाई एक एकड़ से कम भूमि पर शहतूत पौधों का रोपण कर मलबरी रेशम कीट उत्पादन कर आय के अन्य जरिया तैयार कर सकते हैं, और इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा erasham.mp.gov.in पर। इसके अलावा एक और जरूरी सूचना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28 और 29 मई 2026 को भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार NASC कॉम्प्लेक्स पूसा न्यू दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है आज की भेंटवार्ता का, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे पिछले हफ्ते हमने जो बातचीत की थी डॉक्टर मुरलीधर इंगले से फूड प्रिजर्वेशन एवं फूड प्रोसेसिंग को लेकर इसके कुछ अंश। तो आइए सुनते हैं हमारे युवा साथियों के लिए आय के अन्य जरिया हम किस प्रकार से तैयार करें, इस विषय पर की गई बातचीत के अंश। श्रोताओं, आज के समय में हमारे युवा साथियों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार की है, और इसके लिए आज के समय में हम बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं जो हमारे किसान भाइयों के लिए हितकारी होती है।

0: लाभप्रद होती है। हमारी युवा साथियों की जब भी बात आती है तो आय के अन्य स्रोत के रूप में हम दो बातों को अमूमन सुनते हैं, जिनमें फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाद्य प्रसंस्करण, साथ ही खाद्य संरक्षण। तो इसके बारे में आइए जानते हैं डॉक्टर इंगले जी से, कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार में पदस्थ हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इस बारे में कुछ बातें। सबसे पहले सर नमस्कार,
1: नमस्कार।
0: आप हमारे किसान भाइयों को, हमारे युवा साथियों को ये बताइए कि फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रोसेसिंग में क्या फर्क है, क्या अंतर है?
1: जी बिल्कुल। मैं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर मुरलीधर इंगले। मैं खाद्य प्रसंस्करण में ही मेरा डॉक्टरेट हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य संरक्षण एक आज के समय के अत्यंत महत्वपूर्ण ये दो प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि जब तक इंसान पृथ्वी पर है तब तक उसको खाने पीने की चीजें खानी ही पड़ेगी। और आज हमारे पास कृषि कम होती जा रही है,
0: जी
1: तो उत्पादन हमारा घटते जा रहा है। तो साल भर हमें उत्पादन अगर रखना है
0: जी
1: तो उस पदार्थ को हमें ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसका रूप बदलना पड़ेगा कि जैसे वो ज्यादा दिन तक अच्छा रहे,
0: जी
1: और इसी को खाद्य संरक्षण बोलते हैं। और जो प्रक्रिया सारी कहलाती है, जैसे टमाटर से टमाटर का केचप बनता है, तो टमाटर आप 2-3 दिन अच्छे से रहेगा, फ्रिज में ज्यादा से ज्यादा आप 1 सप्ताह रख सकते हैं, लेकिन जब उसका आप केचप या सॉस बनाते हैं तो वो आपका 6 महीने साल भर के लिए एक संरक्षित पदार्थ हो गया। और ये जो प्रक्रिया है टमाटर से लेके टमाटर का केचप बनने तक, ये कहलाता है खाद्य प्रसंस्करण,
0: जी
1: जिसे हम फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसमें एक जो अपना कृषि उत्पाद है उसका हम रूप बदलकर दूसरे फॉर्म में करते हैं, उसका मूल्यवर्धन भी उसे मूल्यवर्धित कर एक अन्य पदार्थ में बदलते हैं, जिसकी समय सीमा बढ़ती है। और किसानों के लिए ये फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इससे अधिक आमदनी उनको मिलेगी।
0: सर, खाद्य संरक्षण की जब बात आती है तो हमने हमारे क्षेत्र में अचार बनाने को लेकर ही सिर्फ जाना है। इसके अलावा हम
1: बिल्कुल
0: और कौन-कौन से काम कर सकते हैं जिससे हमारे युवा साथियों के लिए एक अन्य आय के स्रोत तैयार हों?
1: बिल्कुल। हम घर में देखते हैं कि जैसे अभी जैसे गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं तो महिलाओं के कार्य शुरू हो जाते हैं, अचार बनाना, पापड़, मुरब्बा या जो वड़ी है वो सारे बनाते हैं। ये सारे प्रसंस्कृत पदार्थ हैं, लेकिन ये सारे क्या था कि हम एक ट्रेडिशनल जो हमारी पारंपरिक पद्धति है उससे हम बनाते हुए उसको चल रहे थे। तो अब हमें क्या करना है कि इसी को हम रोजगार का साधन कैसे बना सकते हैं। तो रोजगार का साधन अगर हमें बनाना है तो हमें निश्चित ही इसकी तरफ जाना पड़ेगा। थोड़ा सा प्रशिक्षण लेके, कृषि विज्ञान केंद्र में हम इसके बारे में प्रशिक्षण देते रहते हैं, इसको हम प्रशिक्षण कर विभिन्न पदार्थ, जितने कृषि के उत्पाद है हमारे, चाहे उसमें फल हो, सब्जी हो या जितने हमारे अनाज है, इन सब से हम प्रसंस्कृत पदार्थ बना सकते हैं। हर पदार्थ बनाने के लिए अलग अलग मशीनरीज का उपयोग किया जाता है। अगर मान लो एक अनाज से अगर कोई पदार्थ हमें बनाना है तो उसके लिए अलग मशीनरी आएगी, फल एवं सब्जी का प्रसंस्करण करना है तो उसके लिए अलग मशीनरी आएगी।
0: सर, इसमें एक सवाल हमारे जहन में और ये आता है कि हमारा जो क्षेत्र है बैतूल, इस बैतूल क्षेत्र में कौन-कौन से ऐसे काम हैं, यानी किन पदार्थों को लेकर, कौन सी सब्जियां या किन फलों का हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए आसान हो, और साथ ही इसका जो प्रशिक्षण है वो किन प्रकार से ले सकते हैं?
1: बिल्कुल, हमारे जिले की अगर हम बात करेंगे तो जिले में प्रमुख रूप से हम हमारा सब्जी भाजी उत्पादन में भी जिला काफी अग्रसर है। दूसरी चीज, फल में अगर देखा जाए तो आम हमारे यहाँ अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है आम का, तो उनका भी हम प्रसंस्करण करते हैं। हमारे यहाँ पे सोयाबीन भी अच्छे से होता है, फिर मक्का है, फिर गेहूं है, और गुड़ तो आप देख ही रहे कि गुड़ अपने यहाँ तो हो ही रहा है।
0: जी
1: तो हमें अब अगर हम हमारे जो युवा साथी है उनको अगर हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको अपने रोजगार का माध्यम अगर तैयार करना है तो आप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आइए, जिसमें आप विभिन्न पदार्थ बना सकते हैं। अगर हम फल की बात करें तो फल में हम फल से कैंडी बना सकते हैं, जूस उसका बेच सकते हैं, उसकी पाउडर बना के बेच सकते हैं,
0: जी
1: उसका जो शरबत अलग अलग प्रकार से स्क्वैश बनता है, फिर जैम, जेली, ये
0: जी
1: सारे उत्पादन हम फलों से बना सकते हैं। सब्जियों के बारे में अगर हम देखे जाए तो सब्जियों में टमाटर से केचप हुआ, आलू के चिप्स हुए, तो इसमें प्रसंस्कृत पदार्थ बहुत सारे हैं जो कि हम उत्पादित कर मंडी में या मार्केट में हम अच्छे से बेच सकते हैं। इसमें फल सब्जी में प्रमुख रूप से अपने यहाँ एक तो धूप भी अच्छे से आती है, और अगर आप अभी पिछला 1 महीना देखेंगे तो जिसमें हमारी सब्जी भाजी जो मेथी पालक है, पत्तेदार सब्जियां, वो काफी मात्रा में थी।
0: जी
1: अब अगर देखा जाए, अब 2 महीने बाद वे पत्तेदार सब्जियां
0: नहीं
1: नहीं
0: मिलेगी।
1: मिलेगी। हम अब क्या करते हैं कि जैसे हमें मेथी चाहिए, सूखी हुई मेथी हम दुकान से लेते हैं, कस्तूरी मेथी के नाम से आती है, तो उसका 60 रुपए का 100 ग्राम का पैकेट आता है। वो सिर्फ क्या रहता है कि उसको धो के साफ करके सुखा करके उसको पैकेजिंग में पैकेट्स में डाल के बेचते हैं। अब वही मेथी आप 600 रुपए किलो से दुकान से

0: कि उसको धो के साफ करके सुखा करके उसको पैकेजिंग में पैकेट्स में डाल के बेचते हैं। अब वही मेथी आप 600 रुपए किलो से दुकान से ला रहे हैं और वही मेथी पिछले 1 महीने पहले आपको 10 रुपए किलो, 2 किलो, 10 किलो आपको फ्री में मिल जाती थी। तो ये किसान मेरे जो युवा साथी है उनको मैं बिल्कुल, मेरा आग्रह है कि आप ऐसे क्षेत्र में उतरो कि जो आपके एरिया में देखो कि आपकी फसल, आपके यहाँ पे कौन सी फसल का अधिक उत्पादन हो रहा है। अगर आपके क्षेत्र में मेथी का उत्पादन हो रहा है, पालक का उत्पादन हो रहा है, तो आप सुखाने का यंत्र, जो निर्जलीकरण करने का यंत्र आता है, वो आप समूह के माध्यम से भी लगा सकते हैं या आप अकेले भी उसको कर सकते हो। समूह के माध्यम से करेंगे तो आपको मार्केटिंग करना, क्योंकि उसमें काम आप, कार्य आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
1: जी
0: अलग अलग कार्यों का वर्गीकरण करेंगे तो आपकी और अच्छे से वो चलेगा। और इसमें क्या होता है, समूह के माध्यम से अगर आप जाएंगे तो आपको सब्सिडी मिलने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक बार आपने, अगर आपका इंडस्ट्री सेटअप हो गई, कंपनी आपने सेटअप कर ली, तो उसके बाद आपको फिर क्या करना है कि एक आपका नाम सेटअप करना है। क्योंकि आप मार्केट में देखोगे आज का जो उपभोक्ता है वो सब पढ़ा लिखा उपभोक्ता है, वो कोई भी पैकेट लेने से पहले उस पर नाम देखता है
1: जी हाँ, ब्रांडिंग की बात
0: कि
1: कर
0: ये
1: रहे हैं आप।
0: ब्रांड कौन सा है, ये अच्छा है या नहीं है। तो मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप ऐसा अपने नाम या समूह का नाम ले लो, उसी नाम से ब्रांडिंग करो कि फार्मर टू फील्ड ऐसा करो, या फार्मर फील्ड टू कंज्यूमर, कि सीधा किसान के फील्ड से हम किसान जो उपभोक्ता
1: उपभोक्ता
0: है
1: है
0: उनके
1: उनको।
0: द्वार तक हम पहुंचाते। जब एक बार आपका ब्रांड बन जाएगा तो आपको फिर रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो भी आज आप बड़े ब्रांड देख रहे हो ये सारे जीरो से ही शुरुआत हुए हैं। चाहे बड़े बड़े नाम आप, अगर आप इनका इतिहास जानोगे तो ये सारी कंपनियां एक छोटे से कमरे से शुरू
1: जी
0: हुई
1: हाँ
0: है, एक साइकिल से शुरू हुई है। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप जिस क्षेत्र में जाओगे कि वो आपके लिए कम मूल्य का है। कोई भी क्षेत्र में आप जाओगे, चाहे आप फल सब्जी प्रसंस्करण में जाए या आप अनाज प्रसंस्करण में जाए, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं शुरुआत करके आपको उसे हासिल करना है। क्योंकि देखिए मेरे किसान भाइयों, आप लोग अगर मार्केट में या मॉल में जाओगे, ये किसी ने सोचा नहीं था कि लहसुन की कलियां छील के बेची भी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको जाना तो वो बेच रहे हैं। अनाज, आज हस्बैंड वाइफ दोनों, पति पत्नी दोनों काम में जाते हैं, तो गेहूं पीस के तो लाना है लेकिन साफ करने का समय नहीं है। तो आज कंपनियां क्या कर रही है कि साफ सुफ करके उसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए कुछ मूल्य बढ़ा करके मार्केट में ला देती है कि ये साफ किया हुआ अनाज है, ये दाल साफ की हुई है, तो लोग उसे लेते हैं। तो ये सब प्रसंस्करण में आता है। कुछ प्रसंस्करण की प्रक्रियाएं प्राइमरी रहती है, जैसे गेहूं आपने लाया खेत से, उसका पूरा साफ करके उसको पैकिंग कर दिया 30-30 किलो में, ये आपका प्राइमरी हो गई। फिर आपने क्या किया कि उसी गेहूं को आपने आटा बना के बेच दिया, ये आपकी सेकेंडरी हो गई, जिसे हम दूसरी स्तर का प्रोसेसिंग कहते हैं, दूसरे स्तर का प्रसंस्करण, क्योंकि गेहूं से आप अब उसका आटा बना के बेच रहे हो। अब आपने अगर उस आटे से, जैसे महाराष्ट्र में पूरन पुली की पैकिंग करके बेची जा रही है और वो विदेशों में भी जा रही है, जिसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने तक है, जो महाराष्ट्र का एक फेमस फूड है पूरन पुली। अब वो ही चीज जब आप आटे से क्या बना रहे हो, आप रोटी बना के बेच रहे हो, तो ये चीजें क्या हो गई, ये आपकी टर्शरी पैकेजिंग में आ गई। तो ये प्रसंस्करण के लेवल है, लेवल बाय लेवल। जैसे हम अभी बैंगलोर में गए थे, बैंगलोर में हमने देखा कि वहां पे चावल उनका प्रमुख अनाज है,
1: बात है
0: चावल और वहां का सांबार या इडली सांबार यही खाते हैं, लेकिन गेहूं की रोटी भी उनके होटल में मेन्यू कार्ड में थी। हम जब गए थे तो हमने जाना कि भाई गेहूं की रोटी यहाँ बनाते हैं क्या, बोले नहीं सर, हमारे यहाँ पे हम सिर्फ सेकते हैं उसको। तो आधी बनी बनाई रोटी उनके पास में आती है, 10 का पैकेट आता है, वो 80-90 रुपए का पैकेट आता है, वो 15 रुपए से वो एक रोटी बेचते हैं। तो कोई भी प्रसंस्करित करने वाला उद्योग खाली नहीं रहता, उसमें आप निश्चित ही आपको फायदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको उसकी तरफ जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रसंस्करण के लिए क्या क्या चीजें लगती है उसके बारे में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तो आप निश्चित ही उसमें फायदा ले सकते हैं।
1: सर, इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहेंगे। आपने जो प्रशिक्षण की बात की, तो अगर हमारे युवा साथी इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से इस व्यवसाय में अपनी शुरुआत कर सकते हैं?
0: हाँ बिल्कुल, सबसे पहली चीज तो जो भी साथी इस व्यवसाय में आना चाहते हैं, मैं तहे दिल से उनका हार्दिक स्वागत ही करूंगा, क्योंकि इनमें इस खाद्य प्रसंस्करण की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। अनगिनत पदार्थ इस दुनिया में उपलब्ध है और अनगिनत कंपनियां बना रही है, और कोई भी कंपनी घाटे में नहीं है, क्योंकि खाने पीने की चीज के लिए आपको ग्राहक ढूंढना नहीं पड़ता है। अगर आपके पदार्थ में टेस्ट है, आपके पदार्थ की क्वालिटी अच्छी है और आपके

0: पदार्थ का भाव अच्छा है तो निश्चित ही ग्राहक आपके पास दूर दूर से चल के आता है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो भोपाल से लेके, इंदौर से लेके यहाँ नागपुर से आते हैं, या कहीं कहीं से भी दिल्ली से भी यहाँ आए हैं और हमारे यहाँ का गुड़ लेके गए हैं, तो निश्चित ही हमारे गुड़ की क्वालिटी ऐसी होगी, इसकी वजह से ये गए हैं। तो मैं उन युवा साथियों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो सबसे प्रमुख चीज़ है कि आप पहले फाइनल करो कि आप कौन से क्षेत्र में उतरना चाहते हो। उस हिसाब से आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्रशिक्षण दिया जाएगा कि आप क्या कर सकते हो, कौन सी मशीनरी इसमें लगेगी और वो मशीन आप कहाँ से ले सकते हो। और उद्यानिकी विभाग जो है उनके द्वारा इसमें कुछ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना है, उसमें काफ़ी मात्रा में सब्सिडी भी दी जाती है, तो वो सब्सिडी का भी फायदा आप उठा सकते हो। एक बार आपका फाइनल हो गया कि कौन सी कंपनी आपको करना है, कौन सा पदार्थ आपको मार्केट में लाना है, तो आपको खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण से वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वो लाइसेंस लेना आपको जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी खाने पीने की चीजें जिनमें लेबल लगा है, कोई कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है, तो आप पैकेट को उल्टे साइड देखोगे तो आपको वहाँ FSSAI नंबर लिखा रहेगा, जो 12, 15, 18 डिजिट का एक लाइसेंस नंबर रहता है, जिसकी वैलिडिटी आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल इस प्रकार मिलती है। तो आप वो लाइसेंस लेना आपको बंधनकारक है, वही तभी आप वो पदार्थ आप मार्केट में ला सकते हो। तो मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि आप लाइसेंस भी लें और अच्छे तरीके से इस क्षेत्र में उतरे, क्योंकि अपने एरिया में फल सब्जी बहुत है। अभी आम का सीजन आ रहा है, तो आम में देखो, कच्चा आम है, कच्चा आम से अचार आप बनाते हो, ठीक है, लेकिन उस टाइम उसकी गुठली पकी हुई रहती है। लेकिन और भी पदार्थ है, उससे आप आमचूर बना के बेच सकते हो। अब आमचूर बनाने के लिए आपको अच्छे ही आम तोड़ना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। जब हवा चलती है
1: तो बहुत से गिर जाते
0: बहुत
1: हैं।
0: सारे जो आम है, हरे आम गिर जाते हैं या कुछ डैमेज हो जाते हैं, तो उस आम को आप अच्छे से धो लो, जो डैमेज वाला पार्ट है अगर ज्यादा खराब दिख रहा है तो उसको काट के अलग कर लो, उसका ऊपर का छिलका निकाल दो हरा वाला, और बाकी आम को आप अच्छे से कीस लो और उस कीस को आप धूप में सुखा लो, चाट मसाला उसमें मिला करके, और सुखा के अच्छे से पैकिंग करो। तो ये आपका जो है एक आम का अच्छा पदार्थ तैयार होगा। उसकी आप पाउडर जब बनाओगे तो चाट मसाले के नाम से आ जाएगी, आमचूर जिसे हम बोलते
1: जी
0: हैं, आमचूर इसी प्रकार से बनता है। तो ये ऐसे आमों का हम बना रहे हैं कि जो आम हम कल फेंकने वाले हैं। आज अगर आम हमारे खेत में बहुत सारे गिर गए हैं, तब हम कच्चा खाएंगे तो थोड़ा सा ही खा सकते हैं और दूसरे दिन उसको फेंकना पड़ता है, तो वो फेंकने की बजाय हम उससे पदार्थ बना सकते हैं। फिर एक बार आम आपका गुठली पक्की हो गई, लेकिन हरा आम है तो आप अचार की तरफ जाओ, या जो पना करके है, कच्चे आम का शरबत कहलाता है, जो उष्णता में, जो जितने भी हमें गर्मी है, गर्मी से बचाने में वो लाभदायक है, उसको आप बेच सकते हो। उसकी भी पैकेजिंग करके आप जो मार्केट में वो आ रहा है, मार्केट में उसको बेचा जा रहा है। और एक बार जब आपका आम पक जाए, तो पकने के बाद में उसका रस निकाल के आप उसकी जो कैंडी बना सकते हो, या जो पोली बोलते हैं हमारे इधर, आम की पोली, थाली में आम का जूस डाल के उसको सुखाते हैं
1: जी,
0: तय खाने
1: जेली
0: में,
1: बोलते हैं जैसे।
0: जेली टाइप में,
1: जी
0: जेली में आपका मॉइस्चर ज्यादा रहता है, लेकिन ये पदार्थ आपका 1 साल भर अच्छा रहता है, और ये आप कभी भी कहीं पे भी आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और अच्छी अच्छी खासी आपको इससे आमदनी भी मिलेगी। ये ऐसे विभिन्न पदार्थ है, हम अगर देखने के लिए जाए तो हर कृषि उत्पाद खुद वो प्रसंस्करण के लिए तैयार रहता है। कोई भी पदार्थ, हम कृषि से जो भी पदार्थ आता है वो डायरेक्टली हम नहीं खा सकते, क्योंकि आपको अगर गेहूं या सोयाबीन आपके पास में आया तो आप दूसरे दिन उसकी सब्जी या रोटी सीधा आप उसको नहीं खाते, उस पे आप प्रसंस्करण करते ही है। अब जैसे सोयाबीन से आप टोफू बना सकते हो, सोया मिल्क बना सकते हो, सोया प्रोटीन उसको अलग निकाल सकते हैं, सोयाबीन से तेल तो बन ही रहा है, सोयाबीन से हम आजकल के जितने भी फंक्शन आते हैं, क्योंकि दूध या पनीर की जो कमी हम पूरी कर सकते हैं वो सोया पनीर से कम पूरी कर सकते हैं, जिसे हम टोफू कहते हैं, और वो प्रोटीन में देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा उसमें एक जैसी रहती है, दूध का जो पनीर बनता है और सोयाबीन का जो पनीर बनता है, लेकिन सोयाबीन के पनीर का जो भाव है वो कम रहता है दूध के पनीर की अपेक्षा, लेकिन क्वांटिटी अगर आपके पास में है तो निश्चित ही वो आपको फायदा करेगा।
1: इसके साथ सर, और कोई ऐसी जानकारी जो हमारे युवा साथियों के लिए काफी लाभप्रद हो वो हमें बता दीजिए आप।
0: बिल्कुल, तो मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आप नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी आप, अगर आपके पास समय, आपके पास संयम है, आपके पास इच्छा शक्ति है, तो आप नौकरी देने वाले बनो। और छोटा सा है, छोटे से भी आप व्यवसाय शुरू कर सकते हो। खाद्य प्रसंस्करण का ऐसा है कि आप 5 किलो 10 किलो से भी आपकी शुरुआत आप कर सकते हो।

0: बहुत सारे लोग इसमें उतर रहे हैं, कर रहे हैं, जिन किसी भी किसान भाइयों को और अधिक मात्रा में इसके बारे में जानकारी चाहिए वो कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार में संपर्क कर सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार ये जो कार्यालय समय रहता है 10 से 6 तक हम यहाँ उपलब्ध रहते हैं, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं।
1: इंग्लिश सर, आपने इतनी अमूल्य जानकारियां हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी हमने सुनी ये जानकारी डॉक्टर मुरलीधर इंग्ले से। उन्होंने हमें बताया कि हमारे जितने युवा साथी हैं वो छोटे छोटे व्यवसाय को शुरू करके निश्चित रूप से आय के काफी अच्छे जरिए तैयार कर सकते हैं। कार्यक्रम में अब समय है आज के बाजार भाव का, तो कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति बैतूल से आज के बाजार भाव इस प्रकार रहे। सोयाबीन पीला न्यूनतम रहा 5900 रूपये, अधिकतम रहा 7749 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 7100 रूपये प्रति क्विंटल। चने के लिए न्यूनतम रहे 4250 रूपये, अधिकतम रहे 5801 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 5551 रूपये प्रति क्विंटल। मक्का के लिए न्यूनतम भाव रहे 1701 रूपये, अधिकतम रहे 2050 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 2020 रूपये प्रति क्विंटल। गेहूं के लिए न्यूनतम रहे 2201 रूपये, अधिकतम रहे 2575 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 2385 रूपये प्रति क्विंटल। सरसों की बात करें तो न्यूनतम भाव रहे 5001 रूपये, अधिकतम रहे 7901 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 6700 रूपये प्रति क्विंटल। मसूर के लिए न्यूनतम रहे 6200 रूपये, अधिकतम रहे 6200 रूपये और इसका प्रचलित भाव भी 6200 रूपये प्रति क्विंटल। तुअर के लिए न्यूनतम रहे 5976 रूपये, अधिकतम रहे 7201 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 6450 रूपये प्रति क्विंटल। मूंग के लिए एक ही भाव रहे 7301 रूपये प्रति क्विंटल। तो श्रोताओं, आज के बाजार भाव के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम ग्राम सभा। तो दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त तरुण मालवी को। जय राम जी की जय, जवान जय किसान।
2: किसान वाणी।

0: श्रोताओं, आज के समय में हमारे युवा साथियों के लिए सब
1: एफएम वेव 103.1 MHz पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ।

में आपका फिर से स्वागत है। श्रोताओं, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मीठा खाना पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पसंद नहीं होता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मीठा ना खाना या इसका कम सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे इसी एक बीमारी के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, सेहत की बात गीत के साथ कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे शुगर या शक्कर के कम हो जाने वाली बीमारी के बारे में। जब हमारे खून में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा 70 यानी 70 mg पर डीएल से कम हो जाती है, तब हम इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। श्रोताओं, जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर का स्तर कम होने लगता है तो कई संकेत या लक्षण हमारे शरीर दिखाने लगता है, जैसे कि पसीना आना, घबराहट, कपकपी और बहुत ज्यादा भूख लगना। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। इसके बारे में और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां। आवाजें हैं शबीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की। कार्यक्रम सेहत की बात गीत के साथ।

श्रोताओं, एक ऐसी चिकित्सकीय स्थिति जिसमें रक्त में शुगर या ग्लूकोज लेवल जब सामान्य से बहुत कम हो जाता है, इसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटीज के मरीजों में ये समस्या अक्सर इंसुलिन या शुगर के ज्यादा डोज लेने से हो जाती है, या भोजन छोड़ने से भी हो सकती है। पेनक्रियास की बीमारी से भी शुगर ब्लड शुगर लेवल कम हो सकती है। इस स्थिति में मरीज को चक्कर आना, दौरे पड़ना या फिर कुछ भी निगलने में परेशानी हो सकती है, जिसके कारण मुंह से झाग झाग जैसा बनने लगता है। इस स्थिति में मरीज के गले से एक अलग आवाज आने लगती है, सांस लेने में गंभीर परेशानी भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में मरीज को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होती है, और अगर मरीज कुछ निगलने की स्थिति में है तो उसे फौरन कुछ मीठा खिलाए। तो श्रोताओं, अगर आप डायबिटीज के शिकार हैं तब भी अपनी ब्लड शुगर लेवल के कम होने से बचे, अपना इंसुलिन मेंटेन रखें।

0: आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य सरिता।
1: कार्यक्रम साहित्य सरिता सुन रहे सभी साहित्य प्रेमी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र प्रवीण चौरे का नमस्कार। श्रोताओं, आज के साहित्य सरिता कार्यक्रम में अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं बैतूल बाजार के जाने माने युवा कवि प्रसेन मालवीय जी। प्रसेन जी, आपका स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि आप श्रोताओं से जुड़े और अपनी रचनाएं हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, बिना किसी भूमिका के अपने परिचय की पंक्तियों पर आता हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं जिंदगी में क्या किया। सुन लो दुनिया वालों, मैंने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह जिया। पूजा अपनी माँ को देवी की तरह, जीवन भारत माता के नाम किया। लड़ने को सदा खड़ा अपनों के खातिर, जरूरत पड़ने पर जाकर रक्तदान किया। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि लौट कर आए वक्त कभी तो सवाल जरूर खुद से करूंगा। कमी मुझ में रही होगी कुछ, किसी पर कोई दोष नहीं मढ़ूंगा। मैं हारा जरूर हूं मगर टूटा नहीं हूं, फिसला हूं मगर थका नहीं हूं। है हौसले की उड़ान बाकी मेरी अभी, गिरा हूं मैं जख्म भूला तो नहीं हूं। मुश्किलों के दौर को पार कर जाऊंगा, लड़के हर जंग को जीत कर आऊंगा। अरे कायर नहीं जो भाग जाऊंगा छोड़कर, रणबांकुरा हूं मैं खुद के लिए, खुद से भिड़ जाऊंगा। पूछूंगा हर सवाल कि मैं क्यों पीछे रह गया, हार के या फिक्र में तू क्यों थम गया। क्या पस्त ये तेरे हौसले थे हो गए, जिंदगी को जवाब देना क्या था भूल गया। चलो उठते हैं फिर से संभलते हैं, एक बार फिर से इनकलाब लिखते हैं। हारेगा ये जमाना कामयाबी की बाजी देखकर, हम पथिक है अब फिर से कहानी लिखते हैं। देख लेना ऊंचाइयों तक स्वयं जाएंगे, छोड़ दिया जिन्होंने वे भी स्वयं आएंगे। इज्जत उन्हें तब भी बख्शी जाएगी, हम उनके जैसे थोड़ी ना हैं जो कभी बदल जाएंगे। स्वप्न देखे हैं वो पूरे करके दिखलाएंगे, हम बढ़ेंगे और सदा ही बढ़ते जाएंगे। देख लेना ऊंचाइयों को छू जाएंगे, हम पंछी बन आसमां तक जाएंगे। इसी क्रम में एक कविता और है कि उन्नति के पथ पर आराम की जगह कहाँ होती है, शिखरों को पाने में कोई ढलान कहाँ होती है। चलना पड़ता है धीरे धीरे कदम संभाल कर, चाहत की राहों में नरमी कहाँ होती है। जो आगे बढ़ते हैं वो कभी दिखते नहीं, मुश्किलों से डर कर कभी पथ बदलते नहीं। मेहनत ही उनका वज्रबंध साथ निभाती है, मंजिलों की चाह रखने वाले कहाँ रुकने पाते हैं। धर के धैर्य वो निरंतर बढ़ते जाते हैं, मुस्कुराकर जग से जूझते हर जंग लड़ते जाते हैं। मन की इच्छाएं मार उद्देश्य को अपनाते हैं, तभी तो इतिहास में नाम अमिट कर जाते हैं। कृष्ण ने कहा था फल की चिंता मत करना, कर्तव्य पथ पर अड़िग हे पार्थ सदा चलते रहना। बाधाएं आएंगी जाएंगी यह जीवन का क्रम है, लक्ष्य की ओर बढ़कर अग्रसर रहना ही परम धर्म है। महिलाओं के सम्मान में कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो पढ़ना चाहूंगा। जीवन में आशाओं की किरण लिए चलती है, कोरे कागज पर श्वेत रंग से किस्मत लिखती है। साहस का वह स्वयं अदम्य परिचय होती है, नारी है साहब आसमान सी सोच रखती है। मग्न होकर दुनिया में अपनी आगे बढ़ती है, अब वो किसी से भी तनिक उम्मीद नहीं रखती है। स्वयं सीख गई है लड़ना अपने खातिर, हर कदम पर जीवन की नई परीक्षा देती है। संघर्षों के पथ पर निरंतर बढ़ते जाती है, जिम्मेदारियों को भी वे स्वयं हंसकर उठाती है। कभी बेटी कभी माँ कभी बहू बन हर फर्ज निभाती है। तू जगदम्बा है,

रूप में देवी बन निखर जाती है, हौसलों की उड़ान भरकर सदा आगे बढ़ती जाती है, मुश्किलों की हर दीवार को हंसकर पार कर जाती है, हर कठिनाई से लड़ना अब भली भांति जानती है, माधव नहीं आएंगे बचाने ये भी स्वयं पहचानती है। हे ईश, इतना संबल देना, जीवन की परिपाटी पर कभी निर्मल ना होने देना, प्रेम में कभी कोई कमी ना हो, खुशियों की रंग सदा भर देना, हर कदम सबको लेकर चले, इतना हम सबको बल देना, अजर रहे, अमर रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ऐसा जीवन में वर देना। चंद पंक्तियां बेटियों के नाम करता हूँ। हे अम्ब अम्ब, हे अम्ब सुनो, राधा जूसी मासूमियत दी मुझको, अब मुझको थोड़ा संबल देना, तेरा अंश हूँ थोड़ा, माँ मुझको बल देना। कोमल हृदय में लाखों विचार लिए, जीती सदा अपने परिवार का मान लिए, रखी होती मुस्कान अधरों पर उसके, बेटी आशीर्वाद है इस संसार के लिए, उसके होने से जिंदगी खुद जन्नत है, आज भी बेटी स्वयं एक मन्नत है, चली जाती है डोलियों में पराए घर, उसके जाने पर सब प्रतीक्षारत है, लड़ जाती है वो खुद के हक के लिए, बस अपनों का साथ ही तो चाहती है, साथ मिलने पर हर मुकाम वो पाती, हिंदुस्तान के माथे का तिलक बन जाती है। अब मैं बताऊंगा कि बेटियों ने इतिहास कैसे लिखा। कलम उठाई तो भारत का इतिहास लिखा, मनु बनी लक्ष्मीबाई का सारा कैसे वृतांत लिखा, कलम में स्वयं माँ वीणा पाड़ी जब विराजी, भारत में ज्योति बावन शिक्षा का अधिकार लिखा, गूंजी लता बन सारे भारत की आवाज बन, सुनीता कल्पना बन आकाश में उड़ान भरी, कहते थे क्या खेल के मैदानों में खेलने जाएगी, स्मृति हरमन प्रीत बन भारत की पहचान बनी, कट गए पैर तो क्या हुआ, हौसला ना हारी, नाची ऐसी सारी दुनिया उसकी सानी हो गई, भगवान ने कुछ छीना तो हार ना मानी, प्रभु की दीवानी ऐसी जहर को पानी से पी गई। बेटियां नहीं मांगती किसी से धन और दौलत, बेटियां नहीं चाहती कोई महंगे तोहफे सुविधाएं, बस घर में उसको बेटों सा मान और प्यार मिले, कामयाबी के शिखर पर पहले चढ़ती है बेटियां, माता पिता का सम्मान घर की शान है बेटियां, परिवार का वैभव कुल का मान है बेटियां, होता सबसे पुण्य काम वो होता है कन्यादान, उसके लिए भी सबसे जरूरी होती है बेटियां, पर कुछ के अहंकारों में कोख में मर जाती बेटियां, कुछ वहसी दरिंदों के हवस की शिकार होती बेटियां, बेटियों के नाम पर सरकार तो बस तोड़ती है रोटियां, दहेज के लालच में आज भी क्यों जलती है बेटियां, देना है तो एक कड़ा कानून मांगती है बेटियां, हिम्मत बने तो हिमालय लांगती है बेटियां, आपके थोड़े समय और स्नेह की मोहताज है बेटियां, ईश्वर का सबसे बड़ा प्यार माता पिता के ताज है बेटियां। एक कविता और पढ़ता हूँ। मंजिल चुनोगे सही तो पहुंच जाओगे, रास्तों की तुम परवाह न करना, है हौसला खुद में कुछ करने का, मछली की आंख पर अड़िग रहना, देखना है हर ओर होगी हरियाली, पर तुम उसमें विचलित मत होना, मंजिल चुनोगे सही तो पहुंच जाओगे, रास्तों की तुम परवाह ना करना, ये जिंदगी रण है वही कुरुक्षेत्र का, तुम जीत के लिए निश्चित रहना, चाहे जाना पड़े एकांतवास में, तुम एक पल में फैसला ले लेना, मंजिल चुनोगे सही तो पहुंच जाओगे, रास्तों की तुम परवाह ना करना, याद करना वो स्वप्न जो देखा था, उसके खातिर सदैव अटल रहना, त्याग कर उन सब वासनाओं को तुम, राह से कभी मत हटना, मंजिल चुनोगे सही तो पहुंच जाओगे, रास्तों की तुम परवाह न करना, मेहनत को बना मजबूत हथियार, लक्ष्य पर तुम सीधे एक बार दाग देना, चूक जाओ मगर फिर भी अपने लक्ष्य से विहीन तुम मत होना, मंजिल चुनोगे सही तो पहुंच जाओगे, रास्तों की तुम परवाह न करना, अपनी काबिलियत और हौसलों को सदैव अपने अंदर जिंदा तुम रखना, कब कभी दिग्भ्रमित मत हो जाना, सारथी एक किसन सा जरूर साथ रखना, मंजिल चुनोगे सही तो पहुंच जाओगे, रास्तों की तुम परवाह ना करना, मंजिल अटल हो गर तो संकुचित,

0: तुम अपनी जिंदगी में कदापि मत हो जाना। सपने पूरे करना खुद से यदि तो, मेहनत और असफलता से मत डरना। मंजिल चुनोगे सही तो पहुंच जाओगे, रास्तों की तुम परवाह ना करना। एक कविता और पढ़ूंगा कि समर शेष है तुझको अब लड़ना होगा, कुल घातियों पर प्रहार सही करना होगा। मन में संकोच जरा भी तुम मत करना, दुश्मन चाहे कोई भी हो अडिग रहना। चढ़ाकर धनुष पर प्रत्यंचा सदैव तैयार रहना, मुक्त कंठ से जय घोषों की हुंकार भरना। जय जय हिंदुस्तान, जय जय मां भारती के नारों का अमर उद्घोष करना। लगे जरा भी संकोच, मन में अटल को याद करना। विजय लक्ष्य की साधना कर, सदा आगे बढ़ना। अरे नहीं है दंभ इन काल नेमियों की सेनाओं में, तू अविरल होकर बस इनके आगे टिके रहना। कितने भी हो देखना, ये यक्ष सरीखे प्रश्न करेंगे, अहम का चीख चीख कर महिमा मंडन करेंगे। आरोपों से तो जब सीता भी ना बच पाई थी, ये तो दैत्य है स्वयं हिंदुस्तान का चीर हरेंगे। किस किस प्रकार से अब देखना ये रूप धरेंगे, दुशासन बनकर ये अपनी सारी सीमाएं पार करेंगे। तू अपने सत्य विचारों पर सदा काबिज रहना, कर्म बाण से दुश्मनों पर तगड़ा प्रहार करेंगे। कितने कर ले ये प्रपंच, कितने झूठे वादे करे, दे चाहे कितना प्रलोभन, चाहे कोई हुंकार भरे। परिवार बचाने अपने खातिर शत्रु बांट धरे, सत्ता मिल जाने पर जनता फिर से भूखी मरे। समर शेष है अब तुझको लड़ना होगा, कुल भारतीयों पर प्रहार सही करना होगा। महिलाओं पर एक कविता और पढ़ता हूं। जाना सबने कि शक्ति हो तुम, नर के जीवन की रिक्ति हो तुम। संपूर्ण सृष्टि बसती है तुझ में, स्वयं ही ईश की भक्ति हो तुम। इस जीवन की अनुरक्ति हो, जीवन भर अग्नि में तपती हो। ईश्वर ने रचा स्वयं है तुमको, हर रूप में परिपक्व लगती हो। रचे वेद रचा अपाला बनकर, सीता वन राम संग वन गई थी। विरह में कान्हा को द्वारकाधीश कहा, टूट कर भी सदा मजबूत हुई तुम। माँ बनी तो शिवासा सूत दिया, पत्नी बन जसवंत को था कि मजबूत किया। शिक्षित इतनी कालिदास सोच में डूब गए, डूबी भक्ति में तो कृष्ण की हो गई। नारी बंधनों में बंधी हुई है, प्राण धर्म की वो बनी हुई है। मान सम्मान है सब तुझ में, मानस में पहली लिखी हुई है। जगदम्बा की अलख तुम ही हो, अहिल्या के प्रण तुम ही हो, कल्पना सा हौसला तुम ही हो, मनु का निशाना भी तुम ही हो। समय पर सिद्धार्थ को बुद्ध बनाने वाली तुम हो, राम को वन भेज श्री राम बनाने वाली तुम हो। तोहफे में शीश दान देने वाली सहल कवर तुम ही हो। झांसी को बचाने खातिर लड़ने वाली तुम ही हो। खूबसूरती का पर्याय पद्मनी तुम हो, भारत का प्रथम पद द्रौपदी तुम ही हो। हर जुवा की बनी आवाज लता तुम हो, नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने वाली सावित्री तुम हो। वंदे मातरम गाने वाली ओम नंदिनी तुम ही हो। दुनिया का भूगोल बदलने वाली इंदिरा तुम ही हो। हर क्षेत्र में पारंगत जग में केवल तुम हो, नारी नहीं नारायणी केवल तुम ही हो। हर घर की लक्ष्मी अन्नपूर्णा तुम ही हो, पीहर से तीरथ तक साथ तुम ही हो। बच्चों की संस्कार धानी माँ तुम ही हो, हर रिश्ते को निभाने वाली तुम ही हो। वेदना सिखाने वाली सबरी तुम हो, रहे इंतजार करती उर्मिला तुम हो। हांडा की रानी बन अटल तुम हो, खुद पर आए तो दुर्गावती तुम ही हो। रत्नाकर को तुलसीदास बनाने वाली हो, जसवंत को दरवाजे से भगाने वाली हो। स्वयं ज्ञान शक्ति का भंडार लिए हो, साथी को सही राह दिखाने वाली हो। स्वयं पर विपदा आए तो तुम लड़ जाना, रोके कोई तो उसको किनारे कर आगे तुम बढ़ जाना। रखना हौसले की उड़ान को मजबूत सदा तुम, निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते चले तुम जाना।
1: श्रोताओं, आज के साहित्य सरिता कार्यक्रम में अभी आप बैतूल बाजार के जाने माने युवा कवि प्रसेन मालवीय की रचना सुन रहे थे। अगले क्रम में फिर एक नए रचनाकार के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र प्रवीण चौरा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साहित्य सरिता आकाश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं

0: को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
1: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और

0: संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही

करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% जीएसटी को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिक में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में पहला गीत नाइट इन लंदन फिल्म से, आनंद बख्शी के बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गायक स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

अगले गीत में मोहम्मद रफी के साथ आशा भोसले की आवाज है। लाट साहब फिल्म का ये गीत हसरत जयपुरी का रचा हुआ है, धुन शंकर जयकिशन की।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा खैनी बीड़ी सिगरेट किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
4: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गाना हमराज फिल्म से हमने चुना है। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 बीईएसटी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता सुनना न भूलिए शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गाना हमराज फिल्म से हमने चुना है, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, आवाज महेंद्र कपूर की।

फर्ज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, आनंद बख्शी की बहू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आपके लिए कार्यक्रम में। आइए अब आपको सुनवाते हैं सीआईडी 909 इस फिल्म का गाना, एसएच बिहारी का लिखा हुआ, धुन ओपी नैयर की है, गायक कलाकार आशा भोसले और महेंद्र कपूर।

आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस फिल्म का गाना। गीत हसरत जयपुरी का है, संगीतकार शंकर जयकिशन, गायक स्वर मुकेश और शारदा के।

0: सी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था, फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आती। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया।

सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी।

और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी, 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से। बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हां कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म।

दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं न कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही माँ उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस, जो फिल्म में बिरजू की माँ का किरदार निभा रही थी, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव, वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया।

कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती, डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक तीन बड़ी फिल्में की। साल 1963, गुमराह।

0: सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं।
1: तुमसे

0: सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन, किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे?
1: बोला तुम गाने में हमको हराया,
2: हाँ
1: तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या?
2: मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा।
1: तुम खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: तुम तोड़ेगा?
2: हाँ।
1: पीछे काय को झगड़ा करना जी?
2: हाँ
1: माँ। बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी।
2: तुम ठीक कहते हो।
1: देखो एक चौकरा एक चौकरे गार्डन में घूमता है, तो फिर कबाब में अड्डी काय को?
2: अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा।
1: बोला आगे नहीं आना।
2: हम आएगा।
1: आगे नहीं आना।
2: आएगा।
1: तुम आगे आएगा?
2: आएगा।
1: तुम आएगा?
2: आएगा।
1: अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी।
2: अबे तुम कैसे पीछे जाते हो? ये कसर का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार। यो यो यो यो यो यो यो।
0: सन 1965 फिल्म खानदान।

सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। विमल राय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है।

एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थी। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के।

में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते ही प्यार के।

इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक तीन फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी।

सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। यह वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव।

सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थी। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की माँ नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए।

0: का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
1: एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों।
0: 90 के दशक में सुनील दत्त की दो बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हीरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटी रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र

अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी पसंद। कार्यक्रम का पहला गीत है रामपुर का लक्ष्मण फिल्म से। आवाजें हैं लता जी और किशोरदा की।

आवाज है किशोरदा की, फिल्म का नाम आपकी पसंद। फिल्म का नाम आपकी कसम, कार्यक्रम है मेरी पसंद।

आपकी कसम फिल्म के इस गीत के साथ ही मेरी पसंद कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह के गाए इन गैर फिल्मी गीतों के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे।

0: बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष
0: वैष्णवी। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरा पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उज्जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।